0: دا سنگی جرائن تد پنا جنریک ریم سنزد. نگا جای اکاشوانی لینی شد. نگا توگو چو توت گیا چادو کسد اکاشوانی دلینی سماج پرابت دا مورنگ نیوز گون سنزد.
1: میں لولین نگم. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे. वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे. प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे. विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है. अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए. वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदाम्बी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे. दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे. एक रिपोर्ट.
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे. विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे. प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं. यह यात्रा भारत और सेशल्स के

0: बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मुड़ दिया है।
2: Today we have a new national health policy.
3: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
2: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
4: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
1: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने ये परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
5: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडे स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज

0: कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
2: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
1: हमारे यहाँ डोर टू कलेक्शन हो रहा, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइक्लिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ संदिग्ध हो गया, उसकी रिसाइक्लिंग करना कठिन हो जाती है।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाग अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गईं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो GM मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

0: बाजार वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इम्प्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOn AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रही है। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: Y Flemi Logan San Calangase, Akashwani Lene San Ejectain.
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए
0: कसता नया दौर फ्लेमेलो मोहम्मद रफीता आशा भोसले ने सनजत सही रिश्तों लोयांस जिकन ओपी नैयर

28 जून इतवार और जेके बैंक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का ताजा शुमारा लेकर हम हाजिर। प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन। बैंक और बैंकिंग से जुड़े मौजूदात से आरास्ता इस प्रोग्राम की शुरुआत आइए करते हैं इदारिया से। दोस्तों, एक कहावत है कि जान है तो जहान है, जिसके एक मानी ये है कि अच्छी सेहत से ही हम अच्छी जिंदगी बसर कर सकते हैं, जबकि इसके दूसरे मानी हैं जान यानी जान पहचान या किसी को अच्छी तरह से जानना और जानने के बाद किसी से राबता रखना या मरासिम रखना ही बेहतर जिंदगी का असूल है। आज की इस मादा परस्त दुनिया में जहां पैसा मरकजी अहमियत हासिल कर चुका है, किसी पर भरोसा करना या किसी का भरोसा हासिल करना दोनों ही कार्य दारद हैं और ऐसे में बैंक्स का रोल निहायत ही अहम बनता है। लफ्ज बैंक के मानी ही भरोसा, एतमाद और यकीन है, जो एक कस्टमर बैंक पर और बैंक एक कस्टमर पर जताता है और बैंकिंग का सारा निजाम इसी एतमाद और भरोसे पर चलता है। और हमारे लिए बैंक का मतलब जम्मू कश्मीर बैंक है, जो हमें हर हाल में अपना लगता है। एक बूढ़ी माँ की सूत की कताई का बरकत वाला पैसा हो या एक सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह का मेहनत से कमाया हुआ पैसा, पेंशनर की उम्र भर की कमाई हो या छोटे बच्चों की गुल्लक में जमा शुदा मासूमियत का खजाना, कारोबारियों की दिन भर की कमाई हो या कारखानादारों की प्रतीत, घरेलू औरतों की चुन्नी में बंधा हुआ जरूरत का पैसा हो या मजदूर के माथे के पसीने का पैसा, सबके लिए अगर कोई महफूज जगह है जहां उनका पैसा सेफ रहे तो वो बैंक है। और साथ ही हर शख्स की हर जरूरत का एहसास और उसे पूरा करना भी बैंक अपनी जिम्मेदारी समझता है। ऐसे में जान पहचान का होना अहम बन जाता है, इसलिए बैंक का ग्राहक को जानना और अच्छी तरह से जानना और भी ज्यादा अहमियत का हामिल है। ग्राहक को जानना या नो योर कस्टमर, जिसे हम उर्फ आम में KYC कहते हैं, एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ही नहीं बल्कि हमारा एक समाजी फरीजा है, क्योंकि इस अमल से ही हम माली मामलात में शफाफियत ला सकते हैं, कौम दुश्मन, समाज दुश्मन और ब्लैक मनी के धंधे में मुलवस लोगों को बेनकाब करने में हम कानून की मदद कर सकते हैं। बैंक के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि वो अपने ग्राहक का नाम, बल्दियत, पता, कामकाज, फोन नंबर

0: वगैरह जानें, ताकि पता चले कि किस शख्स ने बैंक के पास अपना मेहनत का पैसा जमा किया है और दो नंबरी और दस नंबरी अशखास की शनाख्त भी हो सके। अगर हमारा पैसा साफ है, हमारा कारोबार साफ है और हमारी नीयत साफ है तो डर किस बात का। बेखौफ होकर अपने केवाईसी दस्तावेज बैंक में जमा कीजिए और देश को खोखला करने वाले अनासिर को पहचानने में मदद कीजिए। इसके अलावा अगर हम अपना पता तब्दील करें, अपना फोन नंबर बदलें या किसी भी तरह से हमारे एड्रेस में या पहचान में तब्दीली वाका हो तो बैंक को इसकी इतला जरूर दें। री केवाईसी प्रोसेस के जरिए अपना शनाख्ती प्रोसेस मुकम्मल करें। केवाईसी या री केवाईसी बैंक और ग्राहकों की साझा जिम्मेदारी है, जो न सिर्फ बैंकिंग निजाम को महफूज बनाता है बल्कि कस्टमर्स को मुख्तलिफ किस्म की फ्रॉड से भी बचाता है। वाजह रहे कि बैंक में आपके जमा शुदा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल महफूज हैं, जो किसी भी सूरत किसी के साथ शेयर नहीं किए जाते हैं। आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास आपकी अमानत होते हैं और वो बैंक ही क्या जो अमानत में खयानत करे। जम्मू कश्मीर बैंक आपसे गुजारिश करता है कि आप अपने तमाम अकाउंट्स का केवाईसी अपडेट जरूर कराएं, ताकि आपकी बैंकिंग महफूज, आसान और शफाफ रहे।
1: एक जरूरी इतला, अगर आप सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों में से किसी भी स्कीम से फायदा हासिल कर रहे हैं जिसका मुआवजा आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बदौलत आता है, तो आज ही अपने नजदीकी जम्मू कश्मीर बैंक की शाख या फिर नजदीकी खिदमत सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड लेके पहुँचे और अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवाए।
2: सामईन, मुल्क के प्रधानमंत्री की जानिब से शुरू किया गया डिजिटल इंडिया अभियान हर गुजरते दिन के साथ जोर पकड़ रहा है, जिसकी वजह से डिजिटाइजेशन का प्रोसेस आम होता जा रहा है। यूटिलिटी सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स वगैरह वगैरह जैसी चीजों को अवेल करने के साथ साथ बाजारों में पैसे का लेन देन बड़ी तेज रफ्तारी से डिजिटाइज होकर ऑनलाइन मोड में आ रहा है। ऐसी सूरत में जब डिजिटाइजेशन का नारा आम हो रहा है और ऑनलाइन पेमेंट्स का रिवाज घर घर पहुंच रहा है, ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स के नित नए हथकंडे और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड खदशात काफी हद तक बढ़ रहे हैं और इनसे निमटना बहुत ही अहमियत का हामिल बन गया है। इस हवाले से हम आज के शुमारे में एक बार फिर आप तक कुछ डिजिटल सिक्योरिटी रिलेटेड टिप्स की जानकारी पहुंचा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इन टिप्स पर अमल करके आप फ्रॉडस्टर्स के हथकंडों से महफूज रहकर हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे।
3: ऑनलाइन बैंकिंग के लिए स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इंतखाब करें, ताकि फ्रॉडस्टर्स के लिए पासवर्ड को डिकोड करना इंतहाई मुश्किल हो जाए।
2: अपने डिजिटल डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर्स के सिक्योरिटी पैचेस को अप टू डेट रखें।
3: अपनी जाती इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले वेबसाइट्स और ईमेल आईडीज का जेन्युइन और लेजिटिमेट होना यकीनी बनाएं।
2: अपने बैंक अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स का रेगुलरली जायजा लेते रहें और किसी भी मशकूक ट्रांजैक्शन को जल्द अज जल्द रिपोर्ट करें।
3: सिर्फ महफूज और जाती वाईफाई नेटवर्क्स के जरिए ही ऑनलाइन बैंकिंग करें।
2: लिंक्स को ओपन करते हुए और अटैचमेंट्स को डाउनलोड करते हुए इंतहाई सावधानी से काम लें।
3: अपने लॉगिन डिटेल्स, पिन्स या पासवर्ड्स किसी के साथ शेयर ना करें।
2: बैंक अकाउंट एक्सेस करने के बाद अपने डिजिटल डिवाइसेस को अनलॉक्ड या अनअटेंडेड ना छोड़ें।
3: शेयर्ड या पब्लिक कंप्यूटर्स पर सेंसिटिव बैंकिंग इंफॉर्मेशन कभी भी स्टोर ना करें। याद रखें, खबरदार रहने में ही हिफाजत और खैरख्वाही है।
0: दोस्तों, हुकूमत हिंद की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मातहत काम कर रहे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने गुज़श्ते महीने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम राइज की। इस हवाले से जेके बैंक ने भी अब डिटेल्ड ऑपरेशनल गाइडलाइंस इशू की हैं। क्या है ये ECLGS 5.0? इससे किनको फायदे हैं, क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं जेके बैंक के डेप्यूटी जनरल मैनेजर क्रेडिट शमीम अहमद से। शमीम साहब, जेके बैंक डायरी में आपका इस्तकबाल है।
4: बहुत बहुत शुक्रिया
0: शमीम साहब। आपसे जानना चाहेंगे कि ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 क्या है और इसे राइज करने के पीछे कौन कौन से अवामिल कार फरमा थे?
4: जावेद साहब, ये स्कीम जो है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये हुकूमत हिंद की तरफ से एक स्पेशल स्कीम लॉन्च की गई है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से,
0: डीएफएस
4: से। इसका जो मकसद था, वो जो अभी हमारा ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, जो भी हालात आलमी सतह पे जो बने हुए हैं, उनकी वजह से जो हमारे बिजनेसेस हैं, जो हमारा कारोबार है, वो मुल्की सतह पर भी और रियासती सतह पर भी मुतासिर हुए हैं।
0: जी जी।
4: तो उन बिजनेसों को सपोर्ट करने के लिए हुकूमत हिंद ने एक स्पेशल स्कीम राइज की है
0: जिसे हम
4: इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 के नाम से जानते हैं।
0: अच्छा, अगर आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस स्कीम से कौन फायदा उठा सकते हैं और क्या क्या फायदे उठा सकते हैं तो उसके बारे हवाले से आप क्या कहेंगे?
4: देखिए, ये स्कीम ऐसी है कि इससे जो भी बिजनेसमैन हैं जिनके हमारे पास वर्किंग कैपिटल लिमिट जिसको हम सीसी कहते हैं उन सारे बिजनेसमैन को ये स्कीम हम दे सकते हैं।
0: अच्छा, क्या फायदा दे सकते हैं?
4: फायदा ये है कि जो भी उनका लिमिट है, सीसी का एक लिमिट होता है
0: बिल्कुल,
4: जो लास्ट क्वार्टर है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का,
0: माने पहली जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 के बीच में
4: जो भी उनकी पीक यूटिलाइजेशन रही है। अच्छा, जितना भी उन्होंने यूटिलाइज किया है,
0: जो यूटिलाइज किया है
4: उसका 20% हम फराहम करेंगे उनको विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी
0: एज एडिशनल क्रेडिट लाइन
4: जी हम देंगे।
0: इस स्कीम के तहत जो पैसा आप देंगे ये किस सूरत में दिया जाएगा और ये कितनी देर में फिर वाजिब अदा होगा?
4: ये वर्किंग कैपिटल टर्म लोन की
0: WCTL
4: जिसको हम बोलते हैं उसके उसमें क्या है कि पहले साल में खाली उनको इसका इंटरेस्ट पे करना है
0: जी,
4: और उसके बाद 4 साल में इसको वापस करना पड़ेगा।
0: माने अगर कोई आज लेगा जून में या जुलाई में लेगा तो उसको ये वापस करना है फिर जुलाई 2031 तक।
4: हाँ,
0: पहला साल सिर्फ इंटरेस्ट भरना है, उसके 4 साल में जो इसकी इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो भरना होगी
4: जी।
0: अच्छा, और ये स्कीम कब तक राइज रहेगी?
4: ये तो जब तक ये गारंटी फी जो हुकूमत हिंद ने दिया है ये 2,55,000 करोड़ जब तक ये खत्म हो जाएगा या 31 मार्च 2027 तक ये स्कीम वैलिड रहेगी।
0: तो इसका मतलब ये है कि जो ख्वाहिशमंद होंगे उनको जल्द अज जल्द इसका फायदा उठाना चाहिए।
4: सही फरमा रहे हैं आप, जो ख्वाहिशमंद होंगे उनको चाहिए कि जल्द अज जल्द ये हमारी ब्रांच के साथ रब्ता करे और इस स्कीम का फायदा उठाए।
0: अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहेंगे वो ये कि गुज़श्ता कई दफे ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी गारंटी स्कीम लाई है बैंक ने या हुकूमत ने तो उसके बाद उसमें बैंक की तरफ से ब्रांचेस को एक बाज़ाब्ता एक लिस्ट जाता था एलिजिबल बोरोवर्स का, क्या इसमें भी वही तरीकेकार होगा या हर कोई एलिजिबल है इसके लिए?
4: मैं थोड़ी सी इसमें वजाहत करना चाहता हूं कि ये स्कीम उनको मिलेगी जिनका अकाउंट SMA 2 में नहीं रहा है। SMA 0 और 1
0: एलिजिबल है
4: लेकिन जो SMA 2 में रहा है वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप सही फरमा रहे हैं, इस बार भी हमने ब्रांचों को ये जो
0: एलिजिबल
4: बोरोवर्स हैं उनका लिस्ट उनके पास है और उनको पता है, ये एक्सरसाइज पहले से हुई है कि कौन इसमें एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है।
0: अच्छा, अब क्या आपकी तरफ से अहकाम सादर किए गए हैं कि ब्रांच रीच आउट करेगा कस्टमर्स को या कस्टमर्स भी आकर के ब्रांच से अपनी तफसीलात हासिल कर सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं?
4: हमारे बैंक में बहुत से जो एलिजिबल कस्टमर्स हैं उनको मैसेज ऑलरेडी गई हुई है हमारे ब्रांच की तरफ से। वो जो ख्वाहिशमंद बिजनेसमैन है वो भी ब्रांच में जाके पता कर सकते हैं कि वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है कि नहीं।
0: नहीं है
4: तो जो एलिजिबल है उनको मैसेज भी गई है, काफी सारी बोरोस को मैसेज ब्रांच से चली गई है कि आप एलिजिबल हैं इस स्कीम के। मैं थोड़ी सी और इसमें वजाहत करना चाहता हूँ कि इसमें जो अप्लाई करना है बोरोस को वो जन समर्थ पोर्टल पे, ये सारा उनको ब्रांच में जाने की जरूरत भी नहीं है, वो
0: ऑनलाइन प्रोसेस
4: में जन समर्थ पोर्टल पे, और वहां भी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल बहुत सिंपल है, सादा है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है अपनी डिटेल दे के, ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन हमारी जो ब्रांच है उन तक पहुंच जाए। तो इसमें उनको मैनुअल एप्लीकेशन देने की जरूरत भी नहीं है।
0: ब्रांच विजिट्स भी नहीं है,
4: वो घर में बैठ के इस जनसमर्थ पोर्टल पर लॉगिन करके ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये जो उनकी ये दरख्वास्त है वो हमारी ब्रांच या हमारे बैंक रूट हो सकती है, और जो हमारे बैंक ने इसमें इंटरेस्ट रेट रखी है वो काफी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है, और जो भी ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनको चाहिए कि जल्द अज जल्द इसमें अप्लाई करके इस स्कीम से फायदा उठाए।
0: शमीम साहब, ECLGS 5.0 के हवाले से ये कारामद गुफ्तगु के लिए आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाइए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
4: थैंक यू।
0: एक जरूरी इतला, जम्मू कश्मीर बैंक की ان بزرگ معذور اور بیمار گاہکوں سے گزارش کی جاتی ہے جو کسی وجہ سے جموں کشمیر بینک کی شاخوں پر نہیں آ سکتے ہیں کہ وہ جے کے بینک کی ڈور سٹیپ بینکنگ سے فائدہ اٹھائیں، جہاں بینک کے نمائندے ان کے گھر آ کر مختلف بینکنگ سہولیات جیسے کے وائی سی ڈاکومنٹس وصول کرنا، لائف سرٹیفکیٹ جمع کرنا، ڈیمانڈ ڈرافٹ بنوانا، کیش ڈپازٹ کرنا یا اپنے اکاؤنٹ سے کیش نکالنے جیسی سہولیات وغیرہ شامل ہیں، نومینل چارجز کے عوض آپ کو گھر بیٹھے میسر ہوں گی۔ لہٰذا آج ہی اپنی بینک شاخ سے رابطہ کریں اور ان سہولیات سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اب انعامی سوال کی باری۔
3: دوستو، پچھلے ہفتے کے شمارے میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ جے اینڈ کے بینک نے اپنا 100واں ای بی یو کس جگہ پر انوگریٹ کیا؟
0: اس سوال کا صحیح جواب ہے منکوٹ پونچھ۔
3: دوستو، اس حوالے سے ہمیں کئی سارے جوابات ای میل کے ذریعے موصول ہوئے، جن میں دیے گئے بیشتر جوابات صحیح تھے، لیکن لکی ڈرا کے ذریعے چنے گئے آج کے ہمارے تین ونرز ہیں،
0: کشمیر ڈویژن سے بڑگام کی شازیہ، جموں ڈویژن سے رامبن کے عجائب سنگھ چمبیال اور لداخ سے لہ کے تاشی سرنگ۔
3: انعام جیتنے والے تینوں دوستوں کو ہماری طرف سے انعام بہت بہت مبارک۔
0: اور اب نوٹ کریں آج کا انعامی سوال۔
3: دوستو، آپ کو بتانا ہوگا کہ ای سی ایل جی ایس کا فل فارم کیا ہے۔
0: آپ کے جوابات ہمیں 4 جولائی سنیچروار شام 5 بجے تک ہمارے آفیشیل ای میل آئی ڈی جے کے بینک ڈائری @jkbmail.com پر پہنچ جانے چاہیے۔ یاد رہے کہ اپنے جوابات کے ساتھ آپ اپنا 16 ڈیجٹ کا اکاؤنٹ نمبر، اپنا نام، پتہ اور فون نمبر لکھنا نہ بھولیں۔
3: تو لیتے ہیں آپ سے رخصت اگلی اتوار تک، تب تک کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ ہماری 24/7 بینکنگ سروسز کے ذریعے، اور کسی بھی مزید جانکاری کے لیے ڈائل کیجیے ہمارا ٹول فری نمبر
0: 1800-890-2122
3: یا وزٹ کریں ہماری آفیشیل ویب سائٹ
0: www.jkb.bank.in۔
3: اس میں کوئی افسوس کے پروگرام ہو رہا؟
5: ngaje akashwani leni jut ngato chu chot oschu chatu kasata thuguni dikrim sanazar thugis kitsel dine dikrim na thugu to karnam skan gun stanzin la rol jesa langmo skarma chojon jingche namu diskin la rol stanzin rol kar mento chewa chojol tang stanzin namu gun dikrim pulkan dechen yang rol yang dikrim ekotik zat kan chening chorol।

कुछ सपनों को ड्राफ्ट में रखा, कुछ अरमान सेंड हो नहीं पाए, कुछ रिश्ते स्पैम में खो गए, कुछ अपने फिर भी लौट के आए। दिल का मेल बॉक्स है ये। गुड मॉर्निंग, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका स्वागत है।

आवाज दी एफएम गोल्ड एआईआर दिल्ली @gmail.com पे और हाजिर हो गए दिल का मेल बॉक्स लेकर के हम संदीप मक्कर ज्योति मक्कर मन्नत भारत कमल और पिंगावाला चौक गोरिया जलंधर से और हमें नमस्कार करते हुए बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया नमन अपार ढींगिया ने हमें मैसेज किया है और अमर रमेश कुमार खत्री हैं टेलर मास्टर कृष्ण लाल खत्री हैं मोहम्मद अमीन जफर सादिक हैं और शंकर गुल शर्मा जी भी हैं और साथ में हैं अपनी अपनी चॉइस के साथ अपना नाम और साथ में अपने दोस्तों के नाम के साथ ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से। तो भाई ऑक्सीजन पार्क सुन के कितना अच्छा लगता है। सिद्धार्थ गुड़ाने हैं अर्चना गुड़ाने प्रणय प्रसिद्धि और हीरामन शिंदे हैं और इसके बाद हैं भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा लखनपाल रंधावा सुरेंद्र कौर रंधावा जसप्रीत सिंह आपकी चॉइस का ये वाला गाना फिल्म का नाम है नाखुदा और ये है दिल का मेलबॉक्स।

0: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
1: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
2: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
3: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
2: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
4: 3-5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में, दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।

अगर मैं पूछूं कि खफा ना होना दिल के मेल बॉक्स में कभी कभी आपकी चॉइस ना प्ले हो पाए तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, बाकी सॉन्ग्स भी तो हैं जो आपकी चॉइस हमारी चॉइस सेम टू सेम है और बहुत सारी चॉइस मिलती जुलती हैं। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सर्व देशमुख, सानवी देशमुख, हर्षदा देशमुख है और उसके साथ साथ कहते हैं कि वायाल परिवार और समस्त राजे जाधव परिवार देशमुख आपके साथ है। और हमारा तहे दिल से शुक्रिया करते हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, हम भी तो सुन रहे हैं आपको हमेशा, थैंक यू वेरी मच। सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग हैं ये, और फिल्म का गाना इन्होंने जिसका सुनना चाहा है वो रहा, बस आप थोड़ा थोड़ा सुनिए, सुनने की कोशिश कीजिए, तब तक आपका नाम ये रहा। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नावेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन, रसीद वारसी, अनम और यशफ अब्बासी, सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन, और इसके अलावा रेडियो श्रोता क्लब है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान हैं, और साथ में बहुत सारे लोग अपनी चॉइस के साथ। और ये कहते हुए थैंक यू वेरी मच आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे।

और इस हवा मस्तानी का आनंद जरूर लिया होगा आपने। मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य, साथ में नागर कोहरा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सी टी दीवाना, और एनी सॉन्ग के लिए कहते हैं धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया, आयान बाबू और उसके अलावा डॉट डॉट डॉट शुक्रिया। तो शुक्रिया आपका भी बहुत सारा। दिल का मेल बॉक्स आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे।

दिल का मेल बॉक्स भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान और पूजा परिहार है, और नवा शहर पंजाब से गगनदीप हैं, चित्रा कुमारी हैं, डॉक्टर प्रियंका प्रशांत, प्रियम थाती हैं, वामिका बेबी और वाणी भी हैं। मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला सुरलकर हैं, आरती हैं, ओम भैया हैं, और ये आपका गाना है। गाने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको बोलते हैं कि आप हमें बताइए कि कौन सी ऐसी बात है जो आप और सुनना चाहते हैं, या फिर आप अपने हमें शहर के बारे में बताइए कि क्या है ऐसा खास आपके शहर में, या फिर आपके इस गाने में जो गाना आप हमें बोलते हैं कि ये गाना प्ले कीजिए, कुछ तो होगी कहानी कि वो गाना दिल के इतना पास है।

0: Daksangi sarangi FM Gold, Dili Dikrim Sanazats. Nga siya kash wanilini junjik tangin, nga tukay chutot shchutang skarma, nga pchuga nga chado, kasata tusto tzapik isting ne gyagari shidlons. Skuzya Narendra Modi yule mimang se chanika kongrangi tuksam gun man ki ba tikrim shkyute ngon chuga za chesino. I skor gun a kash wanilini ne sanazat.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
2: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
3: महात्मा गांधी का कहना है,
4: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शब्द कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना चैनल।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है लाइव रेडियो लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस न्यूज पॉडकास्ट साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप

0: क्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: बोल बोल के थक गया, क्या हुआ? नया किडबैग चाहिए तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
4: RBI कहता है
0: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और ये कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की ये ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानि केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है, और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ, तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में

टेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, स्त्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद

जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट बीजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा, लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया, ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे

0: छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: कसता मन की बात टिग्रिम लद्दाख से इसका दिनांग गुरते संचिस्ला फुलेन।
3: ये चेस पीवन मेगुन मन की बात गुरते निजागुन तंग यंग लंचिक जलचे सिनांगा थत्पो छोरारा निस्तों निशु सरोगे लो फेतपो बुत्तो रन इल जवार टुगे रिंगजला ngatangunis मन की बात दिनांगा युलमेगुने लत्सी ट्रांसपो मंगपो जिगेस कोरला सुंडो चोस जुनिल जेना युली ते चोक लस ठांसपो खाचिक चोस देनोक काबोने युलमी छंगमा स्पलंगम छोरचुक इ चगलास कुन युली शुंसक्योपतंग रंगबोस चंदंग डेलतेनोक मिथोपचिक रंग ना कोल कोते नंगा छुमागे डिग्रिम जिगे नंगा थुशेसी स्काप्सोप तेरोआ INS दुनागिरी INS संचोदक INS अग्रा कुन छुमागे ठुआ शेष देनपिन इ छुडुगुनी जोकोतंग जोटुन छाचंग रंगयुलेनो ठोपागुन जुनिल जेनांगा एविएशन सेक्टर एनांगा युले छगलास ठंगपोजिक चोस्तेनो C295 जेरकाने नामडोबो मेड इन इंडिया एनो यांते नामडोबो गोमारंग ट्रांसपोर्ट यांपो फुरतेनो तेना चोस नामडु जिपचु ग्यागारे नांगा चोनिनो तेबोने MSME एरोस्पेस सेक्टर एथोगा स्टोपसुक्शन गुरतेनो यां सेपिदे गोस्कापसंग बिंगस्तेनो यांग ग्यागार रंगबोशन युलजिक चोचेसे मेगजिस्तानपो गुरचेनो इनालजेनांगा डियर डिओतांग युले लॉन्ग रेंज लेन अटेक क्रास मिजालांग ट्रांसपोर्ट यांपो परीक्षण चोस्तेनो इ डियर डुए लेबोरेटरीज तंग इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर निस्के जुंगडेला चोस्तेनो तोंताकपो दिरिंग ग्यागार ग्यासोने तांगस्ते पारनांग चोकपा शुंसक्योप स्तानपो दांग रंगबोशन गुरेनेनो ठोपागुन जुने नांगा यांग लाशिगे गोजुगे नांगा जमलिंग गांपे ग्यागारे बर्सोंदांग डेलोक्स बोर्स इलासगुल बोइन पिन जमलिंग ची योगेंग इनमो दिलन जमलिंगे खाक स्तोंग निस तंग अब्या लाग जमे नांगा योगा तंग डेलते डिग्रिम ना चोशेक टाडेक जूस नतांगे युले नांगमी मांगा सांग मांगपे नासा सुचे का योगे डिग्रिम गुने नांगा खाक लेंस इल जावे नांगा अहमदाबादे नांगा छाकन जमलिंगे योग आसन चैंपियनशिप स्कोरलांग स्पेरा मंगपो बिंग्स इनांगा ग्यागार स्टागमा ग्यान अंचुबजी थोप्स ते ठुआ स्टागमा ग्यान अंगिस सेर स्टागमा एनोक स्टागमा लेनकाने थुए नांगा ग्यागार आंग तांग पे कालोस ने इ डंदुरी नांगा ग्यालखा लेनकान सालपागुल्ला टाशिस दिलेक जुआत Chupagun, Galkarchi ge shok tsospo te yule mimans guni nok, namjik yule mimans gunis, lotak chatkan tupshuk chi chakpo yodnang, tebo kongunis mikjini dechuk nyanama nok. Yul jangche se toga, mimansi lasganis tupshuk po gyagaris te jige nok, yang tebo ngatangunis nyamsu nyongani nok. Chupagun, nupchuk se ishi nanga chen yodkan maktabe nazluk lataste, nge yule mimans gunla juwarik pulpin. Nge juspin, nyan na skaptok sefya seri riksgun mangyo juspin. Gungseng pudala chirgale yul kunla maskyot. Yang kar puling chocheslang juskul chospin. Tena tsogzla jingbat pagunis, chemical metkane sajingbatte rangyule chosma mankane ludmanga kolchesla juwa pulpin. Topagun, nge yule mimansgunla katinjun, nge jagunis nge juwa gun sante choskyor tsam matsat rokskyorang zadenduk. Nga nangtsang mangpo jige chakdis gyote rangrangi thongomstang nyamnyonggun shate duk. Nangtsang mangpe baksto nefya ser mingyo chese thakchato. Yang gosdom chakane sungone ser ngingpagun zopskyor choste kolchese sambang tangsto. Mangpo jige social media gyote kurangi chirgyale zikskorgun jagyang tangskan skorla diste duk. Topagun kar pulingi thogang mimangs mangpo jige rangrangi thongomgun shate duk. Gagun jaktung nasa chige ka skyodatpin, tegune changme barla motor kar chikchik kolchis gozuk chos. Mimangzgune, tsamtu bas tang metro gune nanga chayong tangche shchuen yot tenok. Tebune, petrol tang dizale shidap chanok. Tena tsogzda yule kak mangpune, rang yule lut tonsket gyashe sang natsul jorin nenok. Topagun, nga is pera tsorte tatpo charak. Diring zamling gangpe nanga global crisis yot tus, ngatangi gyagar pagune changma loxte teguni donglen chweni nok. Nga rewarak mimangs nyamzome stopshukspo gyagarbo stanpo dang transpo gyur chugin. Nge chespi ulmegun ngatang gyagare nanga skejaktang bangri bakstongun nangtsangse gastonjik tang nyampo chitsokse gastonjik gyura nok. Nangtsangme kongi gastoni skitpo gamobo janmaguni gyur shiksamste sama nok. Chupagun Maharashtra Nandili nanga Nangtsangshige korangi tatpo gamo ngonchuga izuk la shikchostiduk gabo mimang tsangme nanga kyapspel song. Nandere nanga petkari nangtsangduga nok. Nangtsangi kalte skitpo janmagunla tangche zinna izuk chalak shiktangos gabi skala se tuzla pantoksin. Bakstuni jaga te nangmigunis yule mi palcher stong sumnang pet lak zama skedngane rinzla pantokshasi insurance tradik chostetangs. Mireria bumreri bima choste tangs. Irgyabe mixyul tangs kulungbo salpo cha goshes kakchani nok. Nangmigunla skengan estingne gyunore toknay skala jungches potong. Yang tetus rogram chunjigang pantok chan gyura nok. Topagun, jungi yule mimang saya mangpe nangmigunla shungskyobe rogskyor lep chugini nok. Shidloni suraksha bima yojna nangjin lochigi nanga Kirmo Nishu Premium Yangna Lochige Nanga Kirmo Nishu Premium Ka Bumni Tsukpa Durgarna Bima Thobeni Nok Daksa Tsukpa I Bima Tangyampo Chewa Ngapchu Ngapgya Lakzam Delte Nok Tenanga Chewa Nishu Sabgyat Amagun Shingmogun Tang Pomoguni Nok I Tabzdingbune Noskyun Lepskan Nangsangunla Daksa Tsukpa Zdom Chewa Stonsumdang Dungya Lakzami Rokjam Thobse Nok Chopagun Tena Tsukla Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana Phantokshan Gyurte Nok. Ibo Mijik Nazluk Skyomo Nyampo Tronskan Gune Nangsangunla Tangani Nok. Inanga Bum Nisami Bime Ngulroks Yote Nok. Ibi Lokori Premiumbo Girmo Jibgya Sumchu Surugi Nok. Tontakpo Nimachigi Nanga Girmo Pedang Nizi Nok. Icharji Nanga Daksa Tsukpa Chewa Nishu Sabdun Lakzam Chute Nok. Ibi Nanga Yule Palcher Nangtsang bum chukshiga chewastung nishu tsakngi se rogram topse nok. Debonang nangtsang mangpojiga pante nok. Kachiga rangi tukukani turim lobjong tangchesla rog lepste nok. Kachiga nangil tatokse nanga rog lepste nok. Topagun skabriga shungskyobe gozukpo pening nyungun tang la chunrik tangyampo cho tuba nok. Takcha chunrigang gyuja chenmurik kyunga nok. Nge, ngeja tsangmala juwa pulat, rangrangi nangtsang sinanga, I tapchuzgun eskorla shadazat. Nge, चेस पेल मेगुन मन की बदे नंगा दक्षा चुकपा इजुक जोजी रिकुन लोस्तों ठक मिंगपा दंग मिरिक से चिचोक तंग डेलते योत ते जोजी बोय नोक मोंगदात मोंगदात पो बार बार ला समचुर गोलोक रिक योंग आमानोक तेगुने सेम सिनांगा जिगनांग स्के चुगा नोक यां ते चोक नस्काप सिनांगा मिगुनी ट्रांपे चोकला ताचे स्पांग आनोक स्मोंगदादी वांचा छाकान गुनीस तिजुक थाकचा जिग लेन आनोक गागुनी नोंस्क्यों तांगानोक यां चोक्षिंगनी चिचोक सिनांगा तिजुक मिंगां योते नोक गागुनी चानरिक थोंगोम स्तांग रिकपा तांस्ते ते चोक से तावागुनी दोंलेन चुआनोक स्मोंगदाद ने इच्छे चुकपिक डुल्लांबो लामो योंग आमानोक यांग दिरिंग ने ते चोक से डुलजु ट्रांसपो जिगे स्कोरला नेजागुन नाशादिन ट्रोपागुन असामे नांगा दापचाक से योंग आनोक इ दापचाक से मिंगा हारगिलाय नोक हारगिला मांग्यून थोंकाने चिपा जिगे नोक इबे खुर्युक संगमा बोर्चे से नांगा खाक छेनमो योंग आनोक इन्नांग असामे नांगा तुज जिंगमो जिग चुकपा इबो ग्याला मानखान थेटपिन मिगुने रंगे नेखोरला इचिपा थोंना थादा मेटपिन स्काब्रिगा तेलचांगमा गुनांग चादातपिन काका हारगिले छांग चुआत सामलो सालांग इजुक चिपा कावे खुर्युक संगमा बोर्चे से नांगा रोक्स चुआत ते हारगिला मिगुन जिग सातपिन इन्ना रिंग्सला सेमचाने छनरिक्स पा पुनिर्मा देवी बर्मा ने इ छांगमा थोंग खोंगे मिगुने सेम से नांगा गोलोक गोते योत्खान बो मेतखान चोचे से खचा चोस खोंगे पोमोगुन तांग्यांपो स्पेरा तांग्स खोंगे मिमांजला छनरिक्स जेलदाने का हा गोचोक्स कुले कुलिया पोमोगुने लसगुल तांग डेलेन सोंग तेने ग्योजा छनमोजी गोजुक सोंग गाचिपा बो ग्याला माथ्या अड़ग्याबात पिन तेना बो गम्युले मोरताक्स युर गम्युले पोमोस तोंग ठक हरगिल स्क्योबा दुलना योंस तेनोक दिरिंग खोंगुन हरगिला गम्युल पे मी कने शेसा नोक ये पोमोगुने चिचोक्स तांग यांपो शुंस्क्योब चोस तेनोक चिचोक्सला हा गो चुकचे सिफिया संगीन मेतपा लास चोस यांस्तासम मेते इच्छेस ग्याबास क्युरते खोंगुने स्तान तेनोक कल्तेस हागु ट्रांगपो थोबना लो मांगपे समले नांगा ग्युजा क्यों थुबिन जेरते ठोपागुन ने तुजगुन जेरत सुसेत तेगुने सेचुगा नोक दिन ग्यालखाबे नांगा इचोग जुनुगुने ट्रांसका शुक्षन नांग्यांपो ग्यास्ते नोक कागुने सेनी नोक यां सेचुगिन जितांगे नोक सुगुन नांग स्पेस्ते दक्सा जुनु मांगपो सालियांसगुन करियर रिसुला लेंते नोक nga nagalente izuk stundus ngises korla gyusung kabo mahalashis dog stundus tangpo nagalen baby lake ming chorte ngerangi ibo thugu chun gune liginok samste yodo inang izuk mano loshnga ne chu chungi se thugu chun chun mentok to se thugu gune mixale likji no yangi thugu gune football salpa gune izuk likji no kakane khongune shuksmanga phingste Kongulna spospa tanganok, yang kongune ngortak sang chanok, ibe guzuk, nagalene tugu manga sang manga, football dang delchezla chostenok, loshngane chungi sukpe butsatang pomogune, inanga kak len nyanchezinok, ilikpo talonang losum song chartenok, iligekane, tugune semseka kyat zangpo lebeninok, tupagun, nagalene inanga janyang sundus galajik cheninok, इमिंगा इनोक नागालैंड वुमेन फुटसल लीग ngerang efia फुटसल मिंग सोमाजी गिंडो nge ngerang ashadin फुटसल ला इंडोर फुटबॉल जेरानोक इनंगा टीम चिगिनंगा सल्पाश ngा योंगानोक फुटबॉलर सेतांगेसंग मा छुन योंगानोक इबे जस्ते सल्पा गुना ग्योस्पा थाचत लेंगो सानोक कोंगुलना रंगे टेक्निक दंग स्किल गुन मंगा ग्याला चोस्ते कोलगो सानोक नागालैंडे वुमेन फुटसल लीग ngatange pomogulna rang sal tanche se scabs gyala tangani nok me itsox la sirifia nagalane mimas gulna stota phulat itsox sundus gune galkabe jan kha gunlang spospa tangano thopa gun ibo technology to zabino jagil danika research change gino ai innovation soma soma dulna yongani nok ejings la tiwachik ma khachani nok miguni creativity kazuga scopes de borin technology somatang yampo kenla bingenji jangir siwatang kazuga delte borin e tiwa gune lan pings de no nalinda university lostontak mangpe ngatangi nalinda university bo ta tulpa somaj ge chulla gyagare khak gya shugni nok lo ngi sis ngolna nga nalinda university kyangskor some guzuk stendel chochesi skapstop nalinda university sodlin chochestang ngatangi sungunme chirkagun yangskyar sonpo gyurchuk ste nok sodlin chochespo shastrat ngatangi spera borches po nok ibo tolingdang sodlin chochese chirkai nok inanga sotpadang yampo spangpodang yampo rang espera zerches khachani nok yang tenanga rangmar salchan yonggo sanok janmagune samlui ringsla shatsadang yampo nyanches tang ha gochese labjai nang sodlene chirke nanga thobanok nga thatporak nalinda university ibo khongi lakhir gose tangches khachik choste nok inanga khak lenkani loptuk halam phetpo janyang gyalkhap ringne yongste nok sungunme tsirkajik dakse tuzla delche se ilaspoa ma mangpo stodo chanje nok nge ebe fia nalinda university ma mangpo tashis delek juat nge janyang university gulang juwa pulat ithoga samlo salchezla thopagun patak tang delte borte junu gulla technology fia tadikpo choche se janyang sundrus gyalajik choche jinok Delhi nang ayot khan Central Sanskrit University Artificial Intelligence tang Data Science nanga BTech program gozuk choni nok itu sume technology bo gyagare sirkan nangjine shejon tang yampo delche se chogla gyalkhabe nanga lasir khachan jige nok ekane gyagare skadi gune fia AI tool somajik choche se nanga rok stopche jinok inanga sngonme grantang pandu lipi gun digital thoga ngera gyapche se las chuches la shuk soma thobe ni no nge central sanskrit university ir sundus po ma mang po tashis delik juat thopa gun gyagar dering sheji ge jikstene khak so so chupa lebe ni no ngatange lur ses tang chos gun jiksten gampe miugune shesi ni no jange kole ni no gyagar ne kilometers tong tak thagringa caribbean gyatsuna nga dominican republic zirkane gyalkhab ji gyotte no Iroa, gyagare transkar gya yate sang nyunga yo tenok, ibo yoden jiktang gyagare shejiktang chose toga delche se sundus chon yo tenok. Iroa, Spanish zirkane mikhak chege, team jik chos tenok, I time minga Brahm Kamal, Dominicana bor tenok, time thuzmi changma, Vedic jikjunge lobjong chon jiginok, kongune Vedic zunga gunang jangani nok, kongulna I toga, formal training mathobai nok inang khungulla audio recording yante vedic zunga gun zertang labeni nok dirin khunguni zungak mangpo toneni nok inanga prush sukatam shri sukatam shri ruddam durga sukatam dang devi mahatmayam gun thete nok gyagarne izam thagringa dukste ngatangi cherka gun lepches khunguni irsundu sefia ismon zangpo sungon chugat nge ichokse mi changmala smingnes totpa phulat kagune gyagare shejikpo jiksten gangpe nanga mingchan chochesla chatmelar chundru chuat mi chespe lugun megale ngozin shin gune kane chano I tospa nasa gune kane chano kagun megale chat khongulna nase mimas gune range chorwa yong chukan bo tu jingmo chukpa itulu sano innang megale janyang khachu shigang yotteno kabu nye diring man ki badi na nga nye jatang nyampo trozdur choche zin. Ibo inok, Meghalaya root bridge gyalam chani root man, delche chani root, I root bridge skorbo, ma towa skeche chani yote nok, I bridge po ja khachik lo khachik ina nga dupkhan manok. Ibo duba la lor chutak mangpo gorte nok. Rabaril changma kule kulea chokstan na nok. I patagun chui tokpo gune na nga kera nok. Tustang yampo te patagun zampa shante jiga zole na nok. I zampa gune janyang khachu shik ibo uks yotkane zampa enok. Tuz buden jiktang ibo manga shante chanok. Innang Meghalaya pagune sundus thonduk. Ibo gyalkhabe lo mangpo jige sundus tang khuryuk tang del chenmo yotte nok. I brishpe shada nok mi I rangjin tang nyampo samjik hale che se laschung nyanche zinok. Ibo ngatange gyalkhabe ngatange sakyade norskale nok. ता ग्यागारे नंगा मेघालय रूट ब्रिज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क नंगा लेंचे से जुआ फुलते यो टोपागुन क्लाइमेट चेंज जस्ते ये रूट ब्रिज दुनला सोल्ता मांग पोजिग्योंग अनो इजुक तु से नंगा मेघालय मीमांस गुंडे ये रंगजीन नोर्सकल्ला शुंस्क्योबे खागंग ग्याला चोस्ते लेंते नो स्मोलना ता इजो ब्रिज चांसका चाम युद गुस चोचे संग लामो मेटपिन नसे मीमांस खोरंग गुंडे इबो सिचेस गुजुक चोस टेस्टिंग ने चोस्पा गुंडे ये ब्रिज गुंडे स्टाटोक चोचे से खाक कोर्स दिरिंग नसे मीमांस गुंडे रूट ब्रिज ग्यानंग निश संग मंगा स्टाटोक चोनी नो टीम खाचिगे लुजुंग इ जंपा गुने स्टाटोक लेना नो मी खाचिगे न्यकुरे नसा गुने नंगंग शांति चोचे से फिया नसिरियांग चोस्ते यो तेनो इचोसे शुंस्क्यो बे फिया इकोसिस्टम जिगे टल्डिक चोस्ते नो ngerangi thongste yodo talo heli warjia padma award tangyam po siwa phulte no kungi rangi mitse nanga lo ngapchi sangmanga e root bridges tato ga nanga phute no kungi korang stat kan bo ngatang changme phia spospa chanji gi no thopagun ngerangi e root bridge la zikskor zapina tene tebe par social media ka karmet sala jat ngerangi pare janma gun lang मेघालय जन तंग मिडावे नोर्सकल स्कोर ला हा गोचेज ला स्पोस्पा तंगानो मे चेस पेल मेगुन नतांग संगमे रंगे गम्युल बो संगमा योंगो समानो नतांगे ट्रोंखेर डेमो तोंचेस इन नंग शिंगस्ते इथोगा समलोजिक तंगे धे नतांगे थाकोला खिमसागुन फांगस्ते यो सुइबो संगमा चोनो मांगचेत मेगुन इन्ना समस्ते डुलानो इबो जन्मा जिगे खागिनो yang tenna be sangma chonok inang ngatang i junga izuk miri nga yong anok ka gune samle kane ngatang spos pa tang anok nga madhya pradesh e rajghat zonge bhaya vare shingmori ge skor la ha goche se skap stop kongune jange nge khol la yot kan plastic khimsa gun thenche se khazlin choste no kongue suji gyonste gyuja khyong anok masams kongune tongkherne plastic khimsa dang bottles tongpa gun tuches gozuk chos kulekulya irsunduspo mangar gyachan gyurinsong yangte plastic gun eco brick nanga gyurches gudukchus diring inna eco brick po mimang zomse nasagun jespo choches la kolenino rajgade nanga butkhanil ja khachige nanga kilo gyatha ga nanga plastic gun recycle choste tegun manga gyala choste kolenino yangna ka plastic po smolna thomse nanga khimsa gangchugatpin दिरिंग तेनागुन ई शिंगमोगुने सुंडु से जास्ते ट्रोंखेर जेस्पो चोचे से नांगा कोलेनी नोक मे बयावारी शिंगमो छंगमातांग ई लाजगुल तंग डेल योतकान छंगमाला टाशिस देलेक जुआत मे चेस पेठुम बेगुन ना मा मंगपो जिगे इगे डिस्ते मिक्सले गोरग्यान जिगे का स्पेरा तांचे से पासपे कलते दो ई गोरग्यान बो गणेश उत्सव तंग डेल तेनोक इन नजुगा ता गणेश तुत्सव तंग डेल चेस तरुण तुस मंगपो जिगे तेनोक यंग मीमांस मंगपो जिगे ये गोरग्या ने का दक्षारंग स्पेरा तंगोस जेते दो इन्ना जुगा गणेश जी स्कू जांचे स्मोलना गुजुक छानो स्कू जांकान गुन स्कूदंग डेलते चोंपा गुन दक्षाने शांग चोस्ते योंग आनो तेफिया निजा छांगमाला जुआ फुलात मेरांगे सुंडुस जात गोशे जिनो मेरांगे खांगपे सोसाइटी या नेखोरे नसागुने नांगांग गणपति बाबे स्कू बोर्चे से काबे नतांगे युले सा जांखानिन कबो ngatangi zopa gune lakpa dang nyam po dup khanin ka mi gune ganesh ji sku jangat mette changmala kala ge sku jang ches pa khaktang pe ga bor ches la juwa phulat yang ka gune sku nyat te gunyang ganpati sku chie chos te duk sta gos ka gyal kha be nang a dup te gin plaster of paris la choka ne sku mane nyua ma jat thopa gun kala ge sku gun cho ches thar te sting ne chunanga lamo tang nyam po metkan chanok ইকানে ngatang er sangpo jingdang khuryu ge shungskyop chanok ngatang e iche sanglo sanok yang khuryu ge chosla ngatang e lasganang danda chanok nam ngatang e nase zupa go ne kane skunywa chik ngatang e vocal for local e khazle nang stanpo chanok nga iche jak talan ganesh utsav ta i tsokse gaston go ne nangang ngatang e i tsokse spera go ne kane memang se khare nanga samlo tangen yang gyalkhabe fia kompas point thopagun ngatangi gyalkhabe শুক ছেছেস পো নাতাঙে মিগুনি নক গ্যালকাবে খাক সোসে নাঙা চুয়েন ইয়ত খান চুন্ডুস গুনে খানে নাতাঙা মংপো লোপসানক ইর চুন্ডুসে নাম সেমসে খাজলেন চোনা ইয়ংশিচোসে রোস্তোবনা তিনি গুর্জা ছেনমো কাজুক সিগাং খুং ইয়ানচেস ইনো জেরখান বো সাদানক নিরাঙে রাঙে ঙে করে ই চোস চুন্ডুস গুনে স্কোরলা না গরমেট ডিয়া জাত রাঙে সামচারদাং স্পাসপে গুন কালিনজুক সাজাত ইবিকানে নিরাঙে থাকুরলা ডুলকানে লাজগুল ছেনমো বো গ্যালকা বে ফিয়া স্পেজ গুরিন সিংমাল জেনাঙা নাতাং ইয়াংস্কার জালিন গ্যালকা বে মিমাসগুনে সুন্দুস সোমারি গে কা টোজদুর চোইন তেতে ছুকপা নিরান্তাং নিরাঙে নামে গুনে নাস্তাক বোরা জাত ইয়াং ছু সাকচে জিনক ছারপা থিক্সপা রে রে নাতাঙে সাকচে জিনক ক্যাশ দ্য রেন ই লাজগুল বো নামে ছা চুকচিস মানক তেনেঙে মিক্সালে জুয়া ফুলাত ছারপে থিক্সপা রে রে ছু নাতাং ছংমা লোক তসক্যবিন মা মাংপো থুকজে ছে নমস্কার
2: দাকসঙ্গে সারাঙে মান কি বাত টিগ্রিম সানাজাজ মিডিয়াম ওয়েভ কিলো হার্স সিক্স তো আপচু আসুম ইয়ংনা মিডস ব্যান ইপকে কেচু কেপসি তং চুজুরকু ইয়ং এফ এম মেগা হার্স গিয়ান চিক তং চুজুর চিক তোকনে আসি আকাশবাণী লিনে ঝিনচিক তাং ইন আ তোকে ছুচুত চুকশিক তং স্কর্মা আপচু রুক ছারুক কাসাতা ছুচুত চুকিস্তং ফেচুক পা ফিল্মেলু রিক সানাজাজ সামে সাসংলা জব প্যার কিসি সে হোতা হে ফিল্মেলু সোনু নিগম তং আলকায়াকনিক নে সানাজাত ই লুরসুমকান আনন্দ বক্সি ইয়ংলুয়াং শ্রীকান জাতেন লালিত।

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है। अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

दख संगे शरंगे हर दिल जो प्यार करेगा फिल्मेलो सोनू निगम तंग अलका याग्निक ने सनाजाज ईलूर सुमकन समीर यालो यांग श्रीकन अनु मलिक ए फिल्मेलो गुन सनकन लंगे से आकाशवाणी लेने सन जिकताइन कसता चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्मेलो अलका याग्निक तंग सोनू निगम ने सनाजाद ईलूर सुमकन समीर यालो यांग श्रीकन अनु मलिक

फिल्मिल्लू ये डिग्री में स्तिंग जुप्पे का कुछ कुछ होता है फिल्मिल्लू उदित नारायण तंग अलका याग्निक ने सनाचात ये लोरसोम कन समीर यांगलो यांग श्रीकन जतिन ललित।

0: आपकी चाय। EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
1: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
2: इतना इजी? काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
1: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
2: ना भाई ना।
3: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई है। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशेल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इधर बेलफास्ट में पुरुष T20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani today, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India. Mr. Modi exuded pride that India achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dunagiri, INS Sanchodhak and INS Agre were inducted into the Indian Navy's fleet. The Prime Minister was pleased to note that everything is indigenous from the design to the manufacturing of these ships. The Prime Minister stated that the DRDO also successfully tested an indigenous long-range land attack cruise missile. He noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies. The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. This time, diverse yoga events were held at over 2,500 locations across the globe. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India topped the medal tally.
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई. इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते. इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है. भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा.
2: Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें. लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें. लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी. किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था. मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं.
2: The Prime Minister also spoke about the importance of the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, which provides an insurance cover of 2 lakh rupees to a person's family in the event of an unfortunate death. On the subject of cleanliness, Mr. Modi gave the example of some women from Byabra in Rajgarh district of Madhya Pradesh who resolved to remove plastic waste scattered around the area. Gradually, this effort expanded and the collected plastic began to be converted into eco bricks. Today, these eco bricks are being used to beautify public spaces. Concluding his address, the Prime Minister stressed on water conservation, saying that every single drop of rainwater must be saved. He said the momentum of Catch the Rain campaign should not slacken. In some other news, bilateral talks are underway between Prime Minister Narendra Modi and President of Seychelles, Patrick Hermione, in Victoria, the capital city of Seychelles. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Earlier, he was given a guard of honour at the State House with President Hermione. Prime Minister Modi is scheduled to address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Later, he will attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. The security situation in West Asia has deteriorated sharply after the fragile US-Iran ceasefire effectively collapsed, with both sides launching fresh military strikes over the past several hours. US said it carried out airstrikes against 10 Iranian military targets near the Strait of Hormuz after accusing Tehran of attacking a commercial oil tanker with a drone. US President Donald Trump warned that further violations could trigger a much broader military response. And Lionel Messi becomes the first to score in 7th consecutive FIFA World Cup match as Argentina beat Jordan 3-1 in his Group J finale today. It means Messi has been scoring at least one goal in each of his last 7 World Cup matches he played. The Jordan goal was the 7th straight match in that scoring streak. Messi came off the bench to score from a free kick in the 80th minute, extending his men's World Cup record to 19 goals. And that is the end of this news bulletin.

मीडियम वेव 284.9 मीटर यानी 1053 किलोहर्ट्स और FM 101.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी ले से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम।

जय हिंद फौजी भाइयों, इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्मी गीत। तो आइए कार्यक्रम के शुरुआत में सुनते हैं ये गीत, जिसे हमने लिया है नागार का नागार का फिल्म से, रोमियो फर्नांडिस की आवाज़ों में। गीतकार है मुदस्सर अजीज़ और संगीतकार है ललित पंडित।

रेस फिल्म से लीजिए ये गीत। ताज सुनी थी अपाची इंडियन की आवाज़ों में। गीतकार है ताज और संगीत दिया है प्रीतम।

फिल्म गीतों के इस कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं जब वी मेट फिल्म से मोहित चौहान की आवाज़ में। गीतकार है इरशाद कमील और संगीत दिया है प्रीतम।

अभी आप सुन रहे थे रूबरू फिल्म से। श्रेया घोषाल की आवाज़ में इस गीत को लिखा गया है शुजा हैदर और संगीत से संवारा है स्पीड ऑफ साउंड। फिल्म गीतों के इस कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं लुटेरा फिल्म से शिल्पा राव और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा गया है अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत से संवारा है अमित त्रिवेदी।

ये फिल्म गीत आप आकाशवाणी ले से सुन रहे हैं। अगला गीत हम सुनवाते हैं हाउसफुल फिल्म से, रितु पटक, नीरज और सिदर की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा गया है अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत से सवारा है शंकर एहसान लोहाई।

बचना ए हसीनो फिल्म से के और शिल्पा राव की आवाज़ों में गीतकार है अन्विता दत्त गुप्तान और संगीतकार है विशाल शेखर।

फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं आतिफ असलम की आवाज़ में अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से। इस गीत को लिखा गया है इरशाद कमील और संगीत से संवारा है प्रीतम।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंदरूने मुल्क के दिफाई सामान की तैयारी पर तवज्जो मरकूज करते हुए समुंदर से लेकर आसमान तक तेजी के साथ महफूज और खुदकफील बनता जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में ही तैयार किए गए हवाई जहाज C-295 की पहली परवाज मुकम्मल होने

0: को उजागर किया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने और गैर मुल्की सफर करने से गुरेज करने, नीस कार पूलिंग को फरोग देने की अपनी हालिया अपील के सिलसिले में सरगर्मी के साथ हिमायत करने पर मुल्क के शहरियों के तहत तशक्कुर का इजहार किया। विक्टोरिया में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ दो तरफा बातचीत की है ताकि बाहमी इश्तराक का जायजा लिया जा सके। सरकार ने भारतीय शहरियों से कहा है कि वो सफर से मुतालिक जरूरी दस्तावेजात के बगैर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर न जाएं। मगरबी एशिया में सिक्योरिटी की सूरत हाल बिगड़ गई है। अमरीका और ईरान की अफवाज ने एक दूसरे के खिलाफ फिर से हमले किए हैं और ख्वातीन के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज लंदन में ग्रुप ए के आखिरी मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात को उजागर किया है कि भारत में बनाए गए C-295 तर्ज के हवाई जहाज की पहली परवाज मुकम्मल होने के साथ ही भारत ने जून के महीने में एविएशन के शोबे में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क से खिताब करते हुए वजीर आजम ने बताया कि इस तरह के 40 हवाई जहाज भारत में तैयार किए जा रहे हैं।
1: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: जनाब मोदी ने इस बात पर फख्र का इजहार किया कि भारत ने इस महीने मुल्क की सिक्योरिटी और खुद किफालत से वाबस्ता कामयाबी हासिल की है। वजीर आजम ने हाल ही में कोलकाता में बहरिया की एक तकरीब में शिरकत की थी जिसमें INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे को भारतीय बहरिया के बेड़े में शामिल किया गया। वजीर आजम ने इस बात पर मुसर्रत का इजहार किया कि इन बहरी जहाजों के डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक हर चीज अंदरून मुल्क तैयार की गई है। वजीर आजम ने कहा कि जून के महीने में ही दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने भी मुल्क में ही तैयार किए गए तवील दूरी के जमीनी हमले से मुतालिक क्रूज मिजाइल की कामयाब आजमाइश की। इसे DRDO की तजर्बागाहों और भारतीय सनत के साझेदार इदारों ने मिलकर तैयार किया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत समुंदर से लेकर आसमान तक तेजी के साथ महफूज और खुदकफील बनता जा रहा है। वजीर आजम ने योग के बैन अल-अक़वामी दिन का भी तस्करा किया जिसमें पूरी दुनिया के लोगों ने भारत की कोशिशों के साथ मिलकर कदम बढ़ाया। जनाब मोदी ने अहमदाबाद में मुनक़िदा आलमी योग आसन चैम्पियनशिप का भी जिक्र किया जहां भारत ने सोने के 102 तमगों समेत मजमूई तौर पर 114 तमगे जीते।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: वजीर आजम ने कहा कि मुल्क की तामीर में अवाम की शमूलियत की ताकत भारत के लिए एक बड़ा असासा है। जनाब मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया में जंग जैसी सूरत हाल के तनाजुर में कुछ निकात के सिलसिले में जब उन्होंने हम वतनों से अपील की तो ये अवामी शमूलियत फिर से देखी गई। जनाब मोदी ने लोगों से कहा था कि वो कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने से गुरेज करें, गैर मुल्की सफर पर न जाएं और कारपूल का इस्तेमाल करें। वजीर आजम ने किसानों से भी ये दरख्वास्त की थी कि वो बगैर केमिकल वाली खेती इख्तियार करें, अपने खेतों का तहफ्फुज करें और कुदरती खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जनाब मोदी ने अपनी अपील के सिलसिले में लोगों की हिमायत और हर तरह से सरगर्मी के साथ ताउन करने पर मुल्क के हर शहरी के तहत तशक्कुर का इजहार किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: वजीर आजम ने कहा कि सरकार मुल्क भर के करोड़ों कुंभों को तहफुजाती ढाल फराहम कर रही है। प्रधानमंत्री

0: मुख्यमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुतालिका शख्स को हादसा होने की सूरत में 2 लाख रुपए तक के बीमे की सहूलत मिलती है, जबकि इसका सालाना प्रीमियम सिर्फ 20 रुपए है। मन की बात के इस नशरिए में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तवहुम परस्ती या अंधविश्वास के मौजू पर भी बात की। जनाब मोदी ने बताया कि आसाम में पाए जाने वाले नायाब परिंदे हरगिला को रियासत के बाज़ हिस्सों में किस तरह अशुभ माना जाता था। उन्होंने कहा कि ये हरगिला परिंदा फितरत को साफ रखने में अहम रोल अदा करता है। जनाब मोदी ने कहा कि अंधविश्वास की वजह से उन दरख्तों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगिला के घोंसले होते थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हयातियाती उलूम की माहिर पूर्णिमा देवी बर्मन ने अवाम के जहन में पैवस्त इस गलत तासुर को बदलने का अहद किया और ख्वातीन को साइंस पर मबनी हकाइक से वाकिफ कराया। रफ्ता रफ्ता ख्वातीन उनकी मुहिम में शामिल होती गईं और एक बड़ी कायापलट का आगाज हुआ। अपने खिताब के आखिर में वज़ीर आज़म ने पानी की बचत पर जोर देते हुए कहा कि बारिश के पानी के हर कतरे को बचा कर रखना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि कैच द रेन मुहिम की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। विक्टोरिया में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के सदर पैट्रिक हरमेने के साथ 2 तरफ़ा बातचीत की है ताकि बाहमी इश्तराक का जायज़ा लिया जा सके। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी इश्तराक के तमाम तर पहलुओं का जायज़ा लिया। इसके अलावा उन्होंने इलाकाई और बाहमी मफाद के बैन अलाक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। इससे कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को स्टेट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर सदर हरमेने भी मौजूद थे। जनाब मोदी सेशल्स की कौमी असेंबली से खिताब भी करेंगे और वहां रहने वाली भारतीय बिरादरी के लोगों से मिलेंगे। बाद में वज़ीर आज़म एजाजी मेहमान की हैसियत से सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। मगरबी एशिया में सिक्योरिटी की सूरत हाल बिगड़ गई है। अमरीका और ईरान के दरमियान पहले से ही कमज़ोर जंगबंदी टूट गई है। दोनों ही मुल्कों की अफवाज एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। अमरीका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज के नज़दीक ईरान के 10 फौजी ठिकानों पर फजाई हमले किए हैं। इससे कबल अमरीका ने ईरान पर एक कमर्शियल तेल टैंकर पर ड्रोन से हमला करने का इल्ज़ाम लगाया था। उधर ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिज़ाइल और ड्रोन हमलों के साथ चंद घंटों में ही जवाबी कार्रवाई की। ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भेजी गई भारतीय इमदाद वेनेजुएला पहुंच गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस एतमाद का इजहार किया है कि फील्ड अस्पताल यूनिट इमदादी रसद दवाओं और तिब्बी साजो सामान से वहां जलजले से मुतासर इलाकों में इमदादी कोशिशों को तकवीत मिलेगी। वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि वह कैलाश मानसरोवर यात्रा उस वक्त तक शुरू न करें जब तक कि उन्हें पूरे सफ़र के लिए तमाम ज़रूरी दस्तावेजात हासिल न हो जाएं। वजारत ने यह हिदायत नेपाल में फंसे उन भारतीय यात्रियों की जानिब से मदद की दरख्वास्तें मौसूल होने के बाद जारी की है जो निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रवाना हुए थे। आईसीसी खवातीन के T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में आज भारत ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा। ये मैच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंदरून मुल्क दिफाई सामान की तैयारी पर तवज्जो मरकूज करते हुए समुंदर से लेकर आसमान तक तेज़ी के साथ महफूज और खुद कफील बनता जा रहा है। वज़ीर आज़म ने मुल्क में ही तैयार किए गए हवाई जहाज C-295 की पहली परवाज मुकम्मल होने को उजागर किया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने और गैर मुल्की सफर करने से गुरेज करने नीज कार पूलिंग को फरोग देने की अपनी हालिया अपील के सिलसिले में सरगर्मी के साथ हिमायत करने पर मुल्क के शहरियों के तई तशक्कुर का इजहार किया। और ख्वातीन के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज लंदन में ग्रुप ए के आखिरी मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies. With focus on indigenous defense production, highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft manufactured in the country. In his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation-level talks in Victoria. Government asked Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in their final Group A match in London today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India.
2: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई. C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं. इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है. आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है.
1: Mr. Modi exuded pride that India has achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agrav were inducted into the Indian Navy's fleet. Mr. Modi noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies.
2: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया. इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है. इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है. इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है.
1: The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें. लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें. लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी. किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था. मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं.
1: Mr. Modi also cited the example of the Pejkar family in Nandedh, Maharashtra, who arranged accident insurance for approximately 3,500 villagers. Each individual was provided with an insurance cover of 1 lakh rupees. The Prime Minister shared that the government is extending this protective shield to crores of families across the country.
2: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है. उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है. ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है. इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है.
1: In this episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also touched upon the subject of superstition. He noted that superstition has been deeply ingrained in human society for millennia. Mr. Modi shared how the rare Hargela bird found in Assam was considered inauspicious in certain parts of the state. The Prime Minister stated that it was during that time that biologist Purnima Devi Barman resolved to change the misconceptions deeply rooted in people's minds.
2: Hargila ek durlabh pakshi hai. Ye prakruti ko swachh rakhne mein ahem bhumika nibhata hai. Lekin Assam ke kuch ilakon mein lambe samay tak ise ashubh mana jata tha. Phir ek bada badlav shuru hua. Hazaron gramin mahilaye Hargila ko bachane ke liye aage aayi. Aaj unhein Hargila army ke naam se jana jata hai. In mahilaon ne samaj ke sath sangharsh bhi kiya. समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे.
1: Touching upon the topic of sports, Prime Minister Modi expressed happiness that the number of young people in the country who are both playing sports is rapidly growing. In today's Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also spoke about preserving people's creativity in the age of technology and AI. He said Nalanda University has found a solution to this and is now shaping India's destiny in a new avatar.
2: Nalanda Vishwavidyalaya ne शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है. दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है. मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया.
1: Mr. Modi highlighted other significant efforts are underway to prepare the youth for new technology while keeping them rooted in their heritage. The Central Sanskrit University in Delhi is launching a B.Tech program in artificial intelligence and data science. Prime Minister Modi expressed happiness that Indian culture is reaching various corners of the globe today. He spoke of an initiative in the Dominican Republic, which has an Indian population of around 100.
2: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है. वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है. भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है. वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है. इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना. टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं. भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है.
1: The Prime Minister mentioned Meghalaya's root bridges, saying these root bridges take decades to take shape. He shared that India has now applied to have Meghalaya's root bridges included in the UNESCO World Heritage Site Network. On the subject of cleanliness, Mr. Modi gave the example of some women from Byavara in Rajgarh district of Madhya Pradesh. The women resolved to remove plastic waste scattered around the area. Mr. Modi also urged people to ensure that the idol of Ganpati Bappa for Ganesh Utsav is made from the soil of this country and crafted by the hands of local potters and artisans. He also urged those who make Ganesh idols to prioritize clay idols. Concluding his address, the Prime Minister stressed on water conservation, saying that every single drop of rainwater must be saved. He said the momentum of Catch the Rain campaign should not slacken. In some more news, Prime Minister Narendra Modi and President of Seychelles, Patrick Hermione, held bilateral talks at Victoria this afternoon. Both leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. Earlier, he was given a guard of honor at the State House, with President Hermione also present. Several agreements were exchanged in a range of fields, including agriculture, finance, space, and health. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan today highlighted the central role of villages in realizing the vision of Viksit Bharat 2047. Addressing the Rashtriya Grameen Vikas Sammelan in New Delhi, Mr. Chauhan said a provision of over 1,51,000 crore rupees, including the state's contribution, has been made under the Viksit Bharat Grameen scheme to accelerate rural development while ensuring livelihood security for rural workers.
3: Village is not merely a part of India's geography. It is the soul of India. It is India's economy, its identity. A village is not just a settlement. It embodies India's civilization, culture, values of life, traditions, and has long been a center of prosperity. Our strength lies in our villages, and so does our future potential. Villages are also the strongest unit of our democracy. Today's conference is a meaningful churning of ideas aimed at achieving rural prosperity.
1: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at TIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to Midday News. The security situation in West Asia has deteriorated sharply after the fragile US-Iran ceasefire effectively collapsed, with both sides launching fresh military strikes over the past several hours. The United States said it carried out airstrikes against 10 Iranian military targets near the Strait of Hormuz after accusing Tehran of attacking a commercial oil tanker with a drone. US President Donald Trump warned that further violations could trigger a much broader military response. Iran responded within hours with missile and drone attacks targeting American military facilities in Kuwait and Bahrain. More from our correspondent.
4: The latest exchange marks the most serious collapse of the interim ceasefire agreed earlier this month between Washington and Tehran. The United States Central Command says it carried out strikes on multiple targets inside Iran in response to continued attacks on commercial shipping. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps says it retaliated by launching missiles and drones targeting U.S. military infrastructure in Kuwait and Bahrain. Following the exchange, both Washington and Tehran accused each other of violating the ceasefire. In a statement, United States Central Command said Iran had been given an opportunity to uphold the ceasefire, but instead launched a one-way attack drone that struck Panama-flagged oil tanker MT Kiku. Iran's foreign ministry, meanwhile, said it had carried out strikes against targets linked to American forces, blaming it as the treaty-breaking United States regime for renewed escalation. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
1: Indian assistance sent under Operation Amistad has reached Venezuela. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar expressed confidence that the field hospital unit, relief supplies, medicines and medical equipment will bolster ongoing post-earthquake relief efforts in the country. On to sports now. Kidambi Srikanth has advanced to the men's singles final of the U.S. Open Badminton Championships at the Titan Gym in California today. Srikanth defeated Japan's Yudai Okimoto in a hard-fought semi-final. He will next face Su Li Yang of Chinese Taipei in the final. In ICC Women's T20 World Cup, India will take on Australia in the final Group A match at Lord's Cricket Ground in London today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. In men's cricket, India will take on host Ireland in the second and final T20 International of the two-match series in Belfast today. The match is scheduled to begin at 6 p.m. Indian Standard Time. In FIFA World Cup, Argentina star Lionel Messi has become the first player in history to score in 7 consecutive World Cup games. The 39-year-old scored with a free kick after coming off the bench as Argentina won 3-1 against Jordan. It was Messi's 6th goal of the 2026 World Cup and he leads the Golden Boot race by 2 goals. Lo Celso and Lautaro Martinez scored the other 2 goals for Argentina as they finished their Group J campaign with 3 wins from 3. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies, with focus on indigenous defense production. Highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft made in India. In his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation-level talks in Victoria. Government asked Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in the final Group A match in London today. With that, we end the Midday News.
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
2: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
5: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
2: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
5: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
5: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
5: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
2: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
2: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है, ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ, हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ कर के रहे।
5: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
2: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
2: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
5: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
2: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
5: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
2: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है।
5: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
2: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
5: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में

0: अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किकू पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। 2 मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Medium wave kilohertz chikstong apchung ngaksum yang na meters pan ngib ge kechu kepsi tang chuzur gu yang FM megahertz yang na chik tang chuzur chik tok ne ngachi akashwani lini chun chik tang in. Nimi chuzut nistang pechadu, kasata chuzut nistang skarma ngapchung ngang chukpa latakse lorik sanchis lapulin. Changmisang sngol la tsevang nurbi salgani ilubu sanazat.

0: ibo akashvani le in kasatangi janangai phonjok chujgal nas nasul sanazat chitlo narendra modi during yul tangchi galkap guni mimas gulna khona he man ki bar digrim sanchis la phula jate no is kap khon shada jatka nangjin junil de nanga yul c 295 num 2 gozuk jachis nas gagala num 2 laskha gina nga dubda chinmojik thopte inok kabi jaste yul nanga lasnes kap ma bingchis inok molto khon is man ki bar digrim nanga yoge jaktang delte thostu gaja denji gagari nanga yoge nanga Mimas Jewa Mangpoji Kaklen Tenok Yang Ahmedabad Inanga Jamling Shil Dane Yogi Danduri Nanga Galka Lenkan Salpa Gunna Tashis Delik Jua Zat Tenok Shilones Nupchok Se Eshi Inanga Maktab Se Naska Bingste Yotus Khongye Jue Kayu Le Tomi Gunnes Rok Zachis Pasto Da Zadinjik Izuk Mala Zat
1: Aviation Sector Mein Bhi Desh Ne Ek Badi Safalta Pai C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक

0: सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई, इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: Chinor Ponsal Lame Namdin Skep Gun Gelong Tamchat Ken Chingzikpa Chenpo Chok Dirin Gelsa New Delhi Ne Magmi Namtu Gute Ladakh Lab Hepsa Zat Tenok Skundun La Ladakh Se Rinpo Che Langas Ladakh Nang Pe Tsukzi Thipa Ladakh Gunchi Lan Tsuk Se Thipa Stos Pe Chos Tang Shi De Ushkyong Langas Yang Ladakh Spai Mimang Gunis Le Namtu Thang Ne Jeve Chale Photang Tsuk Pa Phebla Me Yajun Gula Theng Riks De Phepsu Gangshan Jua Zat Tenok Skundun Jeve Chale Photang A Phep Testing Ne Ladakh Nang Pe Tsukzi Thipa Chiring Dorje Lagru Gis Skusung Mandal Phula Zat नोक स्टिंग ने सरपेल सोक्सपा जिगा जलता सा लज्जा दें जिक नंग सोक्से ठिपा चिरिंग दर्जे लग रुगे तालो स्कुंदु ने स्कुई ठुंसकार तुशिन जुलाई इल्दे छेस टू गे जगह गैस पे थोक ने स्टी अजाचे सिनोक यंग स्कुंदु ने ठुंसकार रे जगह मीमांस मा ऐसा मा थुस गोस मलते जुआ फुल अजाते नोक खोंग इस चाद अजात का नाजिन तालो गलवा रिम्पो छे लद्दाख लाल दवा इंगी से संग मा दान छक्चे से रेवा इनोक जुरोक Sham Rzongir Zongspon Kunjas Angme Disil La Khung Se Conference Hall Ina Nga Chokspa Jigbo Da Zate Single Use Plastic Eka Gagja Tang Si Yotka Nito Gal Tatok Tsad Lena Zate Nok Iskab Zongspon Es Mimang Zomse Nasa Gun Eka Plastic Mikol Chese Toga Mimang Gun Ina Nga Hago Spel Ches Tang Tuzgun I Toga Al Tatok Bur Ches Eka Shugz Gaba Zate Nok Khoen Single Use Plastic Eka Gagja Tang Si Sting Ne Ibe Gyab Gala Lash Chona Tene Chatpa Takpo Tang Chese Eka Asal Teno ये चौस्पे नंगा लिखी रे एस डी एम शामरजोंग है तहसीलदार तंग नायब तहसीलदार लोपटा खान सोसे लोपची वीडियो गुन नक्सोक लसकुंग से स्पोनबो लसकुंग सोसे स्पोनबो गुन तंग गम्युल शाम युलजोंग से नंगपे चौकदी ठीपा नंबरदार एसोसिएशन शामे ठीपा मर्चन एसोसिएशन ठीपा थे से जन डेलियो लसकुंग से लश्चित पा मंगफो जिग थुसा जाते नोक Sojung air salyang stang kyoktong gune pandes kore lompo mansuk mandawi tang shungskyo beskore lompo jon bas Sanjay Sid Gun Viksit Vibrant Village Program in Nangloga Dang Changtang Phobrang Gamyu Le Zikskor Zat Inok Zikskor Readings La Lonpo Gunes Yule Goshyong Gun Test Te RTBP Magmi Tang Army Officer Tang Gamyu Le Mimans Gun Tang Yampo Jalzom Zat Inok Iskab Goshyong Gunes Sansam Se Kayutkan Gamyu Le Gun Yargyas Tang I Gamyu Le Gun Kyoktong Gun Wangcha Chancho Che Se Toga Gagar Jung Ichokne La Sir Shulin Yutkan Gun Ikayang Skardabat Zat Te Mola Zat Inok Iskab Phobrang Inanga Viksit Vibrant Village Program in Nangloga Khoryuk Shung Skyop Borchis Khakchan Inkan Tang Sansam Se Gamyu Le Gun Inanga Stanji Yargyas Khongche Se Toga Golchang Lakchuk Chukche Se Dirim Jigang Talik जाते नौक लोनपो गुनेस जिसको रीडिंग ला चंगथांग इर्जोंग स्पोन नीतीश राजोजी थेस थे लसकुंग सोसे स्पोन बो मंगपो जिग जुगते होते नौक ले लुंगटिन खांगुते लदाख से नसुल गुन निमे नाथेंग जी स्ना तो चुचुर गु निमे चुचुर निस तांसकार मंग अप चुंग आ पितो चुचुर स्ना तंग पितो चुचुर दुन तांसकार मा चोई का संचेज ला फुलन जिग इन दोक सम कल लंगे सिज लदाख से नसुल चिचो गुला में का यूट्यूब फेसबुक तंग एक्स का ए आई आर ले न्यूज से का संतुप चेस होते नौक आकाशवाणी लेना स्थान सुल थोन

0: Ibu Akashwani Len casting Shran Tiske Dolmani Nasulgun Sanazat Shidlun Narendra Modi Diring Gelkabi Mimans Kuntang Gagarpa Chigale Yulgunena Nasti Yotkan Kunla Kongra Samchar Kun Lungtin Khan Zabarim Dikrim Man Kibat Kyute Sanchez La Pultenok Shidlun Narendra Modi Junes Zenanga Rangule Joskan C295 Namtu Tangpo Urches Tang Nyampo Gagare Namtu Kagana Tarkil Chenmo Luste Nokmolto Akashwani Nanga Man Kibat Dikrim Nanga Kong E. Kane lasne skap soma nantan sonte nok moltok shidloni manki ba te nanga yog jak tang delte sungdos jate nok kabo jikstin gangpe nanga sisten pin kongen Ahmedabad te nanga gelchil dane yogathan championship e nanga takma lenkhan athlete kunlang tashidele kishwa jate nok etus shidloni kongra samchar ngonchuga jadin chik esuk mola chaj
1: में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई है। C295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दी
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: Dakhsa ngi sharang e tsering palzum tang sonam lamung iski salkane junglu rik sanajat kasata tsewang nurbi salkane yang junglu jigang sanajat

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
1: I came here because I believe that Seychelles occupied a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted to join you as you celebrate 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
0: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
1: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांवों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुई ड्रोन हमले के जवाब में की गई। भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है। अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया। ये भारत का इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहला पदक है। भारत ने आयरलैंड के साथ 2 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला के दूसरे और अंतिम मैच में बेलफास्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 4 मैच में 3 जीत के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi today stated that climate action must be guided by fairness, responsibility and equity. In his special address to the National Assembly of Seychelles, Prime Minister said this is the essence of climate justice. He emphasized that Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive and where international institutions reflect contemporary realities.
1: Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive. We both seek a world where international institutions reflect contemporary realities. We believe that our shared future must be shaped collectively, inclusively, and fairly.
2: Mr. Modi said Seychelles occupies a special place in India's vision for the Indian Ocean and that conviction is stronger than ever. He said the Indian Ocean does not separate India and Seychelles but connects the two countries. He addressed that it will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation.
1: Our vision is captured in the idea of Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions, Mahasagar. This vision recognizes that our futures are interconnected and interdependent, and we will continue to work together for a safer and more secure Indian Ocean region.
2: Prime Minister said it is a special honor to stand before everyone as the first Indian Prime Minister to address the National Assembly. He also thanked President and the people of Seychelles for honoring him with the Seychelles' highest distinction, the Guardian of the Blue Horizon, earlier in the day. Union Ministers Amit Shah, S. Jaishankar, Rajnath Singh, Piyush Goyal, Manohar Lal and Jitendra Singh congratulated Prime Minister Narendra Modi on being conferred with Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. Prime Minister Modi has said that the power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani today, Mr. Modi said this spirit was once again evident after he appealed to citizens to adopt certain measures in view of the prevailing warlike situation in West Asia. Mr. Modi had urged people to avoid buying gold, postpone non-essential foreign travel and use carpooling for some time.
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
2: India today categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and termed as baseless. In response to media queries, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that instead of pointing fingers at others, Pakistan should look inwards and take credible action against the terror infrastructure on its territory. He said Pakistan should rid itself of its proclivity to rely on terrorism as an instrument of state policy. In men's cricket, hosts Ireland were 17 for no loss in 1.4 overs against India in the second and the final T20 international of the two-match series in Belfast when reports last came in. Earlier, India won the toss and elected to bowl. Ireland lead the series 1-0 after registering a 34-run victory over India in the opening T20 international on Friday. India will be aiming to level the series. In the ICC Women's T20 World Cup, India will take on Australia in their final Group A match at Lord's Cricket Ground in London this evening. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. Led by Harmanpreet Kaur, the women in blue are currently placed second in the Group A standings, having won 3 of their 4 matches. Australia, meanwhile, sit comfortably at the top of the table with 4 wins in 4 games. India will be aiming for a victory over the unbeaten Australia to secure that place in the semi-finals. And with that, we end this news bulletin.
3: Masia Kashwani Lenation Chiktan Pitochuzo took tongues Karmashu Chadu Kastangi Sharangay Gamil Pescatlon Degrim Sanatat Degrimicodic Tatkan Sona Manchu

अस्सलामुअलैकुम वजूले दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है फिल्म मैगजीन, और मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त शहनाज फातिमा। तो चलिए दोस्तों, वक्त को ज़ाया ना करते हुए आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे मशहूर सिंगर मोहम्मद रफ़ी के बारे में, जिनके लिए सभी ने कहा क्या फरिश्ता सिफत इंसान रहे। रफ़ी साहब का परिवार गांव कोटला सुल्तान सिंह से ताल्लुक रखता था। इनका जन्म 24 दिसंबर 1924 में हुआ। इनके परिवार को जब पता चला इनका इंटरेस्ट सिंगिंग में है तो पहले तो घर वालों ने नाराज़गी जताई, लेकिन बाद में फॉर्मल ट्रेनिंग के साथ इन्हें सीखने का मौका मिला। इसी बीच में रफी साहब के भाई की मुलाकात हुई अब्दुल हमीद से। उन्होंने कहा रफी साहब को मुंबई आना चाहिए और फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहिए। इसके बाद रफी साहब 1944 में मुंबई आए।

मुंबई शहर में रफी साहब का सफर थोड़ा कठिन रहा। लोगों से बात करते हुए इनकी मुलाकात हुई श्याम सुंदर से। वही श्याम सुंदर साहब जिन्होंने लाहौर में एक दफा रफी साहब को गुल बलोच में गाने का मौका दिया था, और मुंबई में ही श्याम सुंदर साहब ने इन्हें फेमस सिंगर जी एम दुर्रानी के साथ इन्होंने दो गाने गाए।

0: रफी साहब सिंगिंग में आगे बढ़ रहे थे और धीरे धीरे हर बड़े हीरो की आवाज यही बने। दिलीप कुमार हो या देव आनंद, राजेंद्र कुमार हो या फिर शम्मी कपूर, हर बड़े संगीतकार इन्हीं के साथ काम करना चाहता था। नौशाद साहब हो या एस डी बर्मन, शंकर साहब हो या फिर रोशन, सभी इन्हीं के साथ काम करना चाहते थे।
1: अभी न जाओ छोड़ कर

ब्लैक एंड व्हाइट के दौर का सिनेमा रहा या फिर कलर सिनेमा का आगाज, रफी साहब की आवाज का रंग थम सभी के दिल जीतता रहा। रफी साहब सिर्फ बड़े बड़े हीरोज के लिए गाना नहीं गाते थे, लेकिन कॉमेडियन जॉनी वॉकर के लिए भी गाना गाए।

मोहम्मद रफी ने से भरे और छोटे से छोटे सिंगर्स के साथ काम किए। कई बार तो उन्होंने पैसे लिए बगैर भी गाना गाए। वो हर किसी के साथ मिलकर और खुले दिल के साथ काम करते थे। रफी साहब एक खुश मिजाज दिल के मालिक।

0: सकते हैं।
1: तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ गया है। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम फिल्म मैगजीन, जिसे आज प्रस्तुत कर रही थी शहनाज फातिमा। हम आकाशवाणी के लिए केंद्र से बोल रहे हैं।

0: ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: देखा
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है
5: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
6: आई नो ना
5: आरबीआई कहता है
7: करो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट

0: अपोजिट हुआ। इसका एहतमाम जिला इंतजामिया ने प्रेम रावत फाउंडेशन के इश्तराक से किया था। वर्कशॉप में अमन शनाख्त और खुद आगाही के मौजू पर तबादला ख्याल हुआ। ऑपरेशन एमस्टेड के तहत भेजी गई भारत इमदाद वेनेजुएला पहुंच गई है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जी शंकर ने उम्मीद जाहिर की है कि फील्ड अस्पताल यूनिट इमदादी रसद दवाओं और तिबी साजो सामान से मुतासर इलाकों में इमदादी कोशिशों को तकफीत मिलेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्के से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33.8 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:22 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। उसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: आज का तबसरा लेकर मैं गुलजार अमीन। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में मुनक्कद हुई बैन अकीदती कॉन्फ्रेंस को आलमी अमन के लिए एक मुस्बत और हौसला अफजा पैगाम समझा जा सकता है। नेशनल काउंसिल बराई फरोग उर्दू जबान और इंटरफेथ हारमोनी फाउंडेशन के इश्तराक से मुनक्कद की गई इस कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के सदियों से रवा आपसी भाईचारे के ताज में एक और हीरा जोड़ा है। कॉन्फ्रेंस में मुकर्रीन ने अमन को इंसानियत की बका और इसकी सही मानों में खदमत के लिए एक जुज्व लायन करार दिया। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के भाईचारे और बेमिसाल मेजबानी के जज्बे को जहां कश्मीरियत करार दिया तो वहीं उन्होंने इस मीठे जज्बे को हिंदुस्तानियत का ही एक जुज कहा। ये कहकर कि इस दौर में कुरे अर्ज पर बहुत से इलाकों में मजहब और अकायद और सियासी नजरियात में इख्तलाफात की वजह से अफरा तफरी और खून खराबे का दौर दौरा है, LG ने दुनिया को याद दिलाया कि हिंदू धर्म दुनिया को वासुदेवा कुटुंबकम यानी एक घराना मानकर ऊंच नीच और भेदभाव की नफी करते हैं। उन्होंने कहा कि जब 12वीं और 13वीं सदी में हिंदुस्तान में इस्लाम की आमद हुई तो इस्लाम के प्रचारक और सूफी बुजुर्ग वेद और उपनिषद के मिलजुल कर रहने के आफाक के पैगाम से जबरदस्त मुतासिर हो गए जिसने बैन मजहबी रवादारी को जन्म दिया। क्योंकि तमाम के तमाम मजाहिब एक अबदी हकीकत तक पहुंचने के मुख्तलिफ रास्ते हैं, इसलिए सब मजाहिब के मानने वालों ने आपस में शेर शक्कर होकर अनेकता में एकता को फरोग दिया जिसने हिंदुस्तान को दुनिया भर में एक मुनफरिद मुल्क बना दिया जहाँ कोई सरकारी मजहब नहीं है और जो आज की तारीख में सही मानों में एक अजीमुशान सेकुलर मुल्क है। जम्मू कश्मीर को इस सिलसिले में सदियों से एक दरख्शान मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है। इस खिते में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी और बौद्ध सदियों से आपस में मिलजुल कर कुछ इस तरह से रहते चले आए हैं कि मुख्तलिफ मजाहिब के त्योहारों के मौकों पर मजहब की बुनियाद पर शरीक हुए लोगों की पहचान करना नामुमकिन होता है। LG ने इस खास बात की तरफ भी इशारा किया कि सनातन धर्म के पैरोकारों ने तारीख के किसी भी हिस्से में हिंदुइज्म को किसी दूसरे पर थोपने की कोशिश नहीं की। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है तो यहाँ के लोग और सियासी व मजहबी कायदीन इस बात पर फख्र कर सकते हैं कि 20वीं सदी के वस्त में नव आबादियाती निजाम के आकाओं ने हिंदुस्तान को तकसीम किया तो अवाम ने दो कौमी नजरिए को ठुकरा कर सेकुलर भारत को अपनाया। जम्मू कश्मीर के अवाम और इसके रहनुमाओं ने अपने सदियों पुराने बैन मजहबी यगानत के जज्बे की लाज रखी। कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम मुकर्रीन ने आलमी अमन के लिए हिंदुस्तान की वो सारी कोशिशें याद दिलाई जो इस मुल्क के सियासी समाजी और मजहबी रहनुमाओं ने वक्त वक्त पर की है। कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के साबिक सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह, कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर, बैन मजहबी हारमोनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया की सदर, नेशनल काउंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान के डायरेक्टर, दारा शकू सेंटर श्रीनगर के फाउंडर डायरेक्टर, कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन के सदर के अलावा समाज के कई मुमताज शख्सियात और आला ओहदेदारों ने भी शिरकत की। मजकूर कॉन्फ्रेंस मुल्क के वजीर आजम के मिशन सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की एक कड़ी मानी जा सकती है। तबसरा खत्म हुआ। शब्बक है
6: मशिया आकाशवाणी लेने शुंचिक तंग इंसानी चुसोत क्या छादू
3: कस्तई शरंग ग्यारह शिटलोन उसको जब नरेंद्र मोदी के उत्ते मन के बाद टिक रिम यहाँ उसके अर्थ से लद्दाख सना सना चाहत
6: ngi ches pyul megun man ki bad gyutte ngi jagun tang yang lanchik jalche sinanga thatpo chorara mistong ngi sarugi lo phetpo butturan il jawar tugerings la ngatangunis man ki badenanga yulmigune latsi transpo mangpo jiges korla sungro chos junil jenanga yuli te chok las transpo khachik chos deno kabone yulmi changma aspalngam chorchu ই চাকলাস কুন ইউলে সংস্কৃপ্তং রংবোস চান্দং ডেলতে নক মিথুপ চিক রং না কোল কোতে নাঙা ছুমাগে ডিগ্রিম জিগে নাঙা থুসেসে স্কাপস্তোপ তেরোয়া আইএনএস দুনাগিরি আইএনএস সঞ্চোদক আইএনএস আগ্রা কুন ছুমাগে ঠোয়া শেষ তেন পিন ই ছুডুগুনি জোকোত্তং জোটুন ছাচং রং ইউলে নক ঠোপাগুন জুনিল জে নাঙা এভিয়েশন সেক্টরে নাঙা ইউলে চাকলাস ঠাংপোজিক চোস্তে নক C295 জেরকানে নামডোবো মেড ইন ইন্ডিয়া ইনক ইয়ংতে নামডোবো গোমারং ট্রান্সপোর্ট আংয়ামপো ফুরতে নক তেনা চোস নামডু জিপচু গ্যাগারে নাঙা চুনি নক তেবনে এমএসএমই এরোস্পেস সেক্টরে থোকা স্তোপসুকশন গুরতে নক ইয়ং সেপিদে গোসকাপসং বিংসতে নক ইয়ং গ্যাগার রংবোসচন ইউলজিক চোচেসি মেগজিস্তানপো গুরচে নক ইনালজে নাঙা ডিয়ার ডিওতং ইউলে লং রেঞ্জ লেন আটেক ক্রাস মিজালং ট্রান্সপোর্ট ইয়ামপো পরীক্ষণ চোস্তে নক ই ডিয়ার ডুয়ে ল্যাবরেটরিজ তং ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি পার্টনার নিসকে জুংডেলা চোস্তে নক তুন্তাকপো দিরিং গ্যাগার গ্যাছনে তাংস্তে পার্নাং চুকপা সংস্কৃপ স্তানপো দং রংবো চান গুরিনে নক ঠোপাগুন জুনে নাঙা ইয়াং লাশিগে গুজুগে নাঙা জামলিং গাংপে গ্যাগারে বারসন দং ডেলুক্স বোর্স ইলাসগুল বোয়েন পিন জামলিং চি ইয়োগিং ইনমো দিলান জামলিং এ খাক স্তং নিস তং আবগ্যা লাগ জামে নাঙা যোগা তং ডেলতে ডিগ্রিম না চোসেক টাডেক জুস নাতং এ ইউলে নংমি মাঙা সাং মাংপে নাসা সুসে কা ইয়োগে ডিগ্রিম গুনে নাঙা খাক লেন্স ইল জাবে নাঙা আহমেদাবাদে নাঙা ছাকান জামলিং এ ইয়োগ আসান চ্যাম্পিয়নশিপ স্কোরলাং স্পেরা মাংপো বিংস ই নাঙা গ্যাগার স্তাকমা জ্ঞান অঞ্চুবজি থোপস তে ঠোয়া স্তাকমা জ্ঞান নিস সের স্তাকমা এনক স্তাকমা লেনকানে থুয়ে নাঙা গ্যাগার আং তং পে কালুস মে ই ডন্দুরে নাঙা গ্যালখা লেনকান চালপাগুল্লা টাশিস দিলেক জুয়াত ঠোপাগুন গ্যালখাক চিগের শোক চোসপো তে ইউলে মীমাংস গুনি নক নামজিক ইউলে মীমাংস গুনিস লোথাক চাতকান তুপসুক চি টাকপো ইয়োদনাং তে বোখং গুনিস মিগজিনী ডেচুক ঞানামা নক ইউল জাংচে সে থোগা মীমাংসে লাজগানে স্তুপসুক পো গ্যাগারে স্তে জিগে নক ইয়ং তেবো নাতং গুনিস ঞামসু ঞোঙনি নক ঠোপাগুন নুপচোসে এসে নাঙা ছেন ইয়োৎকান মাক্তাবে নাজলুক লাতাস্তে নে ইউলে মীমাংস গুল্লা জুয়ারে ফুলপিন নে জুসপিন ঞান্না স্কাপ্তো সেফিয়া সেরে রিক্স গুন মাঞ্জ জুসপিন গুংসিং ফুদালা ছিরগ্যালে ইউল কুল্লা মাস্কোত ইয়ংকার পুলিং চোচেজলাং জুসকুল চোসপিন তেনা চোজলা জিংবাত পাগুনিস কেমিক্যাল মেতকানে সাজিং বাত্তে রংয়ুলে চোজমা মানকানে লুদমাঙা কলচেজলা জুয়া ফুলপেন ঠোপাগুন নে ইউলে মীমাংসগুনলা কঠিন জুন নেজাগুনি নে জুয়াগুন সান্তে ছোসক্যোর চাম মাছাত রোসক্যোরং জাদেন দোক না নাংসাং মাংপো জিগে ছাকডিস গুতে রং রং এ থুঙ্গম স্তং ঞামঞ্গুন সাতে দোক নাংসাং মাংপে বাক্সতোনে ফিয়া সের মিঙ্গো চেসে থাকচাত দোক ইয়ংগোজদোম ছাকানে সুঙোনে সের নিংপাগুন জোপস্কোর চোস্তে কলচেসে সাম্বাং তাংস দোক মাংপো জিগে সোশ্যাল মিডিয়া গুতে খুরাঙে ছিরগ্যালে জিসকোরগুন জাগ্যাং তাংসকান স্কোরলা ডিস্তে দোক ঠোপাগুন কার পুলিং এ থোগাং মীমাংস মাংপোজিগে রং রং এ থুঙ্গমগুন সাতে দোক কাগুন জাগতুং নাসাচি গে কা স্কোদাতপিন তেগুনে ছাংমে বারলা মোটর কার চিকচিক কলচিস গোজুক চোস মীমাংসগুনে চামথু বাস তং মেট্রোগুনে নাঙা ছায়ং তাংচে চুয়েনিয় তেনক তেবনে পেট্রোল দং ডিজালে সিদাব ছানক তেনা চোখদা ইউলে খাক মাংপুনে রং ইউলে লুৎ থুসকেত গ্যাছে সং নাচুল জোরে নক ঠোপাগুন না ইস পেরা ছোরতে থাতপু ছারাক দিরিং জামলিং গাংপে নাঙা গ্লোবাল ক্রাইসিস ইউতুস নাতাঙে গ্যাগার পাগুনে ছাংমা লক্সতে তেগুনে দংলেন চুয়নি নক না রেওয়ারাক মীমাংস ঞামজোমে স্তুপসুকসপো গ্যাগারবো স্তানপো দাং ট্রান্সপো গুরচুগিন নে চেস পিউল মেগুন নাতাং গ্যাগারে নাঙা স্কেজাক তাং বাংরি বাক্তনগুন नांगसांग से गस्तों जिक तंगयंपो चिचोक से गस्तों जिक गुरानो नांगसांग में खुंगे गस्तों ने स्कितपो गामो बो जन्मागुने ग्यूर शिक सामस्ते समानो ठुपागुन महाराष्ट्र नंदीली नंगा नांगसांग से खोरांगे थातपो गामो गोंचुगा इजुक ला शिक चोस्ते दुक गावो मीमांग संगमे नंगा कैप्सपेल सोंग नंदेड़ नंगा पेटकारी नांगसांग दुगानो नांगसांगे कल्ते स्कितपो जन्मागुना तांचे जिन्ना इजुक चला शिक तंगोस कवि स्कला से तुजला फानथोक्सिन बक्सतुनी जगह ते नामी गुनिस युले मी फलचेर तोंग सुमनां फेद लक्षामा स्केनगाने रिंजला फानथोक्सासी इंश्योरेंस टडेक चोस देतांस मिरेरिया बूम रेरे बीमा चोस देतांस एरग्याबे मिक्सुल तांस कुलोंगबो सल्पो छा गोशेस खचाने नो नामी गुनला स्केनगाने स्टिंगने गुनोरे थोकने स्कला जुंगचेस पोथोंग यांते तुस रोग्राम चुनजिगां फानथोक्सान गुरानो ठोपागुन जुंगे युले मिमांग साया मांगपे नामेगुनला शुंस्क्यो बे रोक्स्क्यो लेपचुगने नोक शिलो ने सुरक्षा बीमा योजना नांजिन लोचिगे नांगा किर्मो निशु प्रीमियम यांगना लोचिगे नांगा किर्मो निशु प्रीमियम का बुमनी सुपा दुर्घटना बीमा थोबेने नोक दक्सा सुपा ई बीमा तंग्यांपो चेवा ngapchung abgyal lagzam delte nok tenanga chewa ngishu sabyat amagun shingmogun tang pomoguni nok ए थब्जिंगबोने नोस्क्यून लेप्सकान नांगसांगुल्ला दक्सा चुकपा जदुमचेवा स्तों सुमदां दुनग्या लाग जमे रोगजाम थुपसेनो ठोपागुन तेना चोदला प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना फंतोसन गुरतेनो इबो मिजिक नजलुक स्क्यूमोन्यांपो टोंसकान गुने नांगसांगुल्ला तांगानिनो इनांगा बुम निसामे बीमे उलरोक्स योतेनो इबे लोखरी प्रीमियमबो किर्मोजिबग्या सुमचु सुरुगिनो तुनतापो निमाची नंगा गिरमो फेदांग निजिनो इचर्जी नंगा दक्सा चुकपा चेवा निशु सब्दुन लागजाम छुतेनो इबेनांगा युले फालचेर नांगसांग बुमचुक्सिगा चेवास्तों निशु सगनिसे रोगजाम थोपसेनो देबोनांग नांगसांग मंगपुजिगा फानतेनो खाचिगा रंगे ठुगुकानि थोरिम लोबजों तांचेसला रोग लेपसतेनो खाचिगा नांगेल तातोक्सेनांगा रोग लेपसतेनो ठोपागुन स्काब्रिगा शुंस्क्योबे गुजुकपो पेनिंग न्यूनतंग लाचुंडिक तंग्यांपो चो थुबानो थाक्चा चुन रिगां जुजा छेनमोरी क्यों आनो ने निजा संगमला जुआ फुलात रंगरंगे नांगचांग सिनांगा इथापचुजगुने स्कोरला शादाजात ने चेस पेलमेगुन मन की बादे नांगा दक्सा चुकपा इजुक जुजी रिकुन लोस्तों ठाक निंगपादांग मिरिक से चिचोक तंग डेलते योत ते जोजी बोइनोक मोंजदात मोंजदात पो बार बार ला समसुर गोलोग रे योंग आमानो तेगुने सेम सिनांगा जिगनांग स्केचुगानो यां ते चोस नस्काप सिनांगा मिगुने ट्रांपे चोगला ताचे स्पांगानो स्मोंगदादी वांचा चाकान गुनीस तेजुक थाक्चा जिग लेनानो कागुने नोंस्क्यों तांगानो यां चोग सिगने चिचोग सिनांगा तेजुक मिंगां योतेनो कागुने सानरिक थोंगोमस्तां रिकपा तांस्ते ते चोक से तवागुने दोंगलेन चुआनोक स्मोंदाद ने इच्छे चुकपेक डुल्लांबो लामो योंग आमानोक यांग दिरिंग ने ते चोक से डुलजु ट्रांसपो जिगे स्कोरला नेजागुन नाशादिन ट्रोपागुन असामे नांगा दापचाक्षिक योंग आनोक इ दापचाक्षिक मिंगा हारगिला एनोक हारगिला मांग्यून थोंकाने चिपा जिगेनोक इबे खुर्युक संगमा बोर्चे से नांगा खाक छेनमो योंग आनोक इन्नांग असामे नांगा तु जिंगमो जिग चुकपा इबो ग्याला मानकान थेटपिन मिगुने रंगे नेखोरला इचिपा थोंगना थादामेटपिन स्काब्रिगा तेलचांगमा गुनां चादातपिन काका हरगिले छांस चुआत समलो सालांग इजुक चिपा कावे खुर्युक संगमा बोर्चे से नांगा रोक्स चुआत ते हरगिला मिगुन जिक्सातपिन इन्ना रिंग्सला सेमचाने छनरिक्सपा पुनिर्मा देवी बर्मा ने इ छांगमा थोंग खोंगे मिगुने सेमसे नांगा गोलोक गोते योत्खान बो मेतखान चोचे से खचा चोस खुंगे पोमो गुंतांग्यां पो स्पेरा तांस खुंगे मिमांजला चंद्रिक सेल्दाने का हा गोचोक्स कुले कुलिया पोमो गुने लसगुलतांग डेलें सोंग तेने ग्योजा छिनमोजु गोजुक सोंग काचिपा बो ग्याला माथ्या अर्ग्याबात पिन तेना बो गम्युले मोरताक्स युर गम्युले पोमो स्तोंग ठाक हरगिल स्क्योबा दुलना योंग तेनोक दिरिंग खोंगुन हरगिला गम्युल पे मी कने शेसानो ये पोमोगुने चिचोक तांग्यां पो शुंस्क्योप चोस तेनो चिचोक ला हा गो चुक चे सिफ्या चंगिन मेत पा लास चोस यांगलतासम मेते इच्छेस ग्या बस्कुरते खुंगुनेस्तान तेनो गलतेस हागु ट्रंपो थोबना लो मंगपे समले नंगा गुजा क्यों थुबिन जेते ठोपागुन ने तुजगुन जेरात सुसेत तेगुने सेचुगानो दिन ग्यालखाबे नंगा इचोस जुनुगुने ट्रांसका शुक्षन नंग्यांपो ग्यास तेनो कागुने सेनिनो यांग सेचुगिन जितायनो सुंगुन नंग स्पेसते दक्सा जुनु मंगपो सालियांसगुन करियर सुल्ला लेंतेनो nga nagalente izuk tsundrus ngises korla gyusung kabo mahala shizdo tsundrus tangpo nagaland baby lake ming chorte ngerangi ibo thugu chun gune liginok samste yodo inang izuk mano loshnga ne chu chungi se thugu chun chun mento tso se thugu gune mixale likjino yangi thugu gune football salpa gune izuk likjino gakane khongune shuksmanga phingste Kongulna spospa tanganok, yang kongune ngortak sang chanok, ibe guzuk, nagalene tugu manga sang manga, football dang delchezla chostenok, loshngane chungi supe busatang pomogune, inanga kak len nyanchezinok, ilikpo talonang losum song sartenok, iligekane, tugune semseka kyat zangpo lebeninok, tupagun, nagalene inanga janyang sundus galajik cheninok, इमिंगाइनोक नागालैंड वुमेन फुटसल लीग ngerang efia फुटसल मिंग सोमाजिगिंडो nge ngerang ashadin फुटसल ला इंडोर फुटबॉल जेरानो इनंगा टीम चिगिनंगा सल्पाश nga yongano फुटबॉलर सेतांग एसंग मा छुन yongano इबे जस्ते सल्पा गुना ग्योस्पा थाचत लेंगो सानो कोंगुलना जंगे टेक्निक दंग स्किल गुन मंगा ग्याला चोस्ते कोलगो सानो नागालैंडे वुमेन फुटसल लीग ngatange pomogulna rang sal tanche se scabs gyala tangani no me itsos la sirifia nagalane mimans gunla stota pulat itsos sundus gune gyalkabe jan kha gunlang spospa tangano thopa gun ibo technology to zabino jagel danika research change gino ai innovation soma soma dulna yongani no ejings la tiwachik ma khachani no miguni creativity kazuga scopes de borin technology somatang yampo kenla bingenji rangir siwatang kazuga delte borin e tiwa gune lan things de no nalinda university lostontak mangpe ngatange nalinda university bo ta tulpa somaji ge chulla gyagare khak gya shugni no lo ngisis ngolna nga nalinda university kyangskor some guzuk stendel chochesi scopes to Nalinda University Sodlin Chochestang Natange Sungunme Tsirkagun Yangskyar Sonpo Gyurchuk Stenok Sodlin Chochespo Shastrat Natange Spera Burchespo Enok Ibo Tulingdang Sodlin Chochese Tsirka Enok Inanga Sotpa Dangyampo Spangpo Dangyampo Rangi Spera Zerches Kachan Enok Yang Tenanga Rangmar Salchan Yongo Sanok Janmagune Samlu Ringzla Shasa Dangyampo ཉན་ཅེས་དང་ ཧ་གུ་ཅེས་སི ལབ་ཇ་ཡན་ནང་ སོལེན་ནི ཚིར་ཁེ་ནང་ ཐོབ་ཨ་ནོག ང་ ཐ་ཐ་པོ་རག ནལེན་ད ཡུན་ཡུན་སི་ཏི ཡིབོ ཁོང་ཡེ ལ་ཁེར གོ་སེ དང་ཅེས་ ཁ་ཅིག ཅོས་ཏེན་ོག ཨིན་ནང་ ཁ་ཁ་ལེན་ཁ་ནི ལོབ་ཏུག ཧལམ ཕེད་པོ ཇན་ཡང་ གལ་ཁ་བྲིན་ནེ ཡོང་སྟེན་ོག སུངོན་མེ ཚིར་ཁ་ཅིག དག་སེ ཏུཟལ་ དེལ་ཅེས་སི ཡིལ་ལ་སཔོ མ་མང་པོ ཏོདོ ཅན་ཅེན་ོག ཉེ་ཡེབེ་ཕ્યા Nalinda University ma mangpo tashis delik juat. Nge Janyang University gulang juwa pulat itoga samlu salchizla. Topagun pataktang delte borte junu gulang technology fia tradikpo chochesi Janyang sundrus gyalajik chochesinok. Delhi nang ayotkan Central Sanskrit University Artificial Intelligence tang data science nanga BTEC program gozuk choninok. Itu sume technology bo ग्यागारे सिरका नाजिने शेजोन तांग्यामपो डेलचे से छोक्सला ग्यालखाबे नांगा लासिर खाचान जिगे नो एकाने ग्यागारे स्कादी गुने फिया एआई टूल सोमाजिक चोचे से नांगा रोक्स थोपचे जिनो इनांगा स्गोन में ग्रांतांग पंडु लिपि गुन डिजिटले थोगा न्यारा ग्यापचे से लास चोचेजला शुक सोमा थोबे निनो ने सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी इरसुंडुस पोआ मा मांगपो टाशिस देलिक जुआत ठोपागुन ग्यागार दिरिंग शेजिगे जिक्स्तेने खाक्सोसो चुकपा लेबनी नौक ngatange lur ses tang chosgun jiksten gampe miugune shesini nok.

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला टी20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व, विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट

0: Our shared future must be shaped collectively, inclusively and fairly.
1: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीपराष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि यह सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि यह सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया।

0: केंद्र और राज्य का मिला के ये 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही, इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7.5 लाख करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत किस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
2: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप्प हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी। फ्रांस में 1,000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग। This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermeni in Victoria, says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honoured with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation-building is one of India's greatest strengths. New Delhi rejects Islamabad's allegations of a recent incident in Karachi, terming them baseless. Europe continues to experience record-breaking heat wave. France reports over 1,000 deaths. In cricket, India set a target of 171 runs for Australia in their final Group A match of the Women's T20 World Cup in London. And in men's cricket, India gets a target of 155 runs by hosts Ireland in the final T20 International in Belfast. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
5: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है. भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले. आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी.
4: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation-level talk with Seychelles President Patrick Hermeni in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields including agriculture, finance, space and health. Prime Minister Modi expressed happiness that an MOU has been signed to implement UPI in Seychelles.
5: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है.
4: He said the India-Seychelles partnership in the health sector has stood the test of time. He said the MOU signed on Jan Aushadhi today will help provide quality and affordable medicines to the people of Seychelles. Addressing the gathering, Seychelles President Hermeni said maritime security in the Indian Ocean region remains central to bilateral ties, with the two countries reaffirming their commitment to counter piracy, drug trafficking, illegal fishing and cross-border crime.
6: A particularly significant milestone is the groundbreaking inauguration of the Professional and Technical Education Center. This India-assisted project will equip Seychellois youth with world-class vocational training, strengthening our capacity building. My deepest gratitude to Prime Minister Modi for this transformative initiative.
4: On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The Seychelles President conferred the prestigious honour on Prime Minister Modi. The distinction has been awarded to Prime Minister Modi in recognition of his green leadership, his efforts towards advancing the interests of developing countries, and his long-standing commitment to promoting the blue economy, climate action, the sustainable management of ocean resources, and the developmental aspirations of small island developing states. Prime Minister Modi dedicated the honour to all the countries who are committed to environmental conservation and fighting climate change. Later in the day, Prime Minister Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, both India and Seychelles seek a world where development is more inclusive and international institutions reflect contemporary realities, reaffirming their commitment to advancing the interests of the Global South.
5: Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive. We both seek a world where international institutions reflect contemporary realities. We believe that

0: Our shared future must be shaped collectively, inclusively, and fairly.
1: Mr. Modi said that India's vision is captured in the idea of Mahasagar, which recognizes that our futures are interconnected and interdependent.
0: Our vision is captured in the idea of Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions, Mahasagar. This vision recognizes that our futures are interconnected and interdependent, and we will continue to work together for a safer and more secure Indian Ocean region.
1: The Prime Minister said it is a special honor to stand before everyone as the first Indian Prime Minister to address the National Assembly. He also thanked the President and the people of Seychelles for honoring him with the Seychelles' highest distinction, the Guardian of the Blue Horizon. Mr. Modi reached Victoria yesterday on a three-day visit to the East African island nation. Meanwhile, Lok Sabha Speaker Om Birla and several union ministers, including Amit Shah, S. Jaishankar, Rajnath Singh, Piyush Goyal, Manohar Lal and Jitendra Singh congratulated Prime Minister Modi on being conferred with Seychelles' highest distinction for the leadership in environmental conservation and sustainable development. Prime Minister Modi has said that power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani today, Mr. Modi said this spirit was once again evident after he appealed to citizens to adopt certain measures in view of the prevailing warlike situation in West Asia. Mr. Modi had urged people to avoid buying gold, postpone non-essential foreign travel and use carpooling for some time.
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: Mr. Modi also spoke about preserving human creativity in the age of technology and artificial intelligence. He said Nalanda University has found a way to achieve this and is shaping India's future in a new avatar. Recalling that he had dedicated the university's new campus to the nation 2 years ago, Mr. Modi said it has revived the ancient tradition of Shastrarth or intellectual discourse. India Today categorically rejected allegations made by Pakistan regarding the recent incident in Karachi and termed them as baseless. In response to media queries, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that instead of pointing fingers at others, Pakistan should look inwards and take credible action against the terror infrastructure on its territory. He said Pakistan should rid itself of its proclivity to rely on terrorism as an instrument of state policy. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back to the News at 9. Vice President C.P. Radhakrishnan has called upon people to work towards making the country healthy and free from drug addiction under the Nasha Mukt Bharat Abhiyan. Mr. Radhakrishnan was addressing the Foundation Day celebrations of the Rajiv Gandhi University of Health Sciences alongside the Nasha Mukt Bharat Abhiyan program at the Kantirava Outdoor Stadium in Bengaluru. The Vice President said awareness, responsibility and collective action are essential to build a healthier society and a stronger nation. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today launched the pilot project of PM Family Care Tracker at Gandhinagar in Gujarat. The integrated digital platform will track the health, nutrition and education of beneficiaries from pregnancy until the age of 18 using a unique ID linked to birth registration number or Aabha ID. The system will integrate data from multiple government platforms, generate risk alerts and monitor key indicators including vaccination, malnutrition, school enrollment and dropout rates. Four traditional agricultural products from Madhya Pradesh have been granted the geographical indication or GI tag. They are Sitahi Kutki, Nagadaman Kutaki, Ben Gani Arhar and Chatriya Dhan. The State Agriculture Department described the recognition as a major achievement for farmers. In Assam, the flood situation in Dhemaji has worsened following days of heavy rainfall in the district and neighboring Arunachal Pradesh. We have more from our correspondent.
2: In Assam, the raging floodwaters of the Simen River in Dhemaji district have washed away a portion of the crucial railway bridge, entirely cutting off rail connectivity in the area and bringing train services to a complete standstill. State Disaster Response Force is carrying out rescue operation in Ujjalpur village under the Mopan Panchayat, where the 60 stranded families are being evacuated. While no casualties or loss of life have been reported so far, significant loss of property and livestock have been recorded across the affected region. Meanwhile, Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma stated that the situation is being closely monitored. Rakesh Dole, Akashwani News, Guwahati.
1: The India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for tomorrow. The Met Department said that conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into some more parts of Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar and some parts of Uttar Pradesh and Uttarakhand during the next 3 to 4 days. The Met Department further predicted heatwave conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh and Uttar Pradesh for tomorrow. Europe is continuing to experience a record-breaking heat wave, with several countries including France, Germany and the Czech Republic reporting new temperature highs over the weekend. French health officials said there have been around 1,000 deaths since Wednesday as the intense heat wave continues to scorch the country. Out of these, 85% of deaths were of the elderly. Parts of France have topped 40 degrees Celsius this week, piling pressure on hospitals and first responders amid a surge in emergency call-outs. Temperatures have also been topping 40 degrees Celsius in Germany and the Czech Republic. Moreover, in Hungary, a nuclear power plant has been affected by rising water temperatures in the nearby Danube River, causing the cooling water temperature to increase and impacting the operation of some reactors. In France, 11 people on board were killed after a skydiving plane crashed in the northeastern region of France today. Morte et Moselle representative Yves Segui said that the aircraft went down near the city of Nancy. Emergency services rushed to the scene while authorities began collecting witness statements as part of the investigation into the crash. In Saudi Arabia, 14 people were killed after a helicopter belonging to country's oil giant Aramco crashed today in Ras Tanura on its eastern coast on the Gulf west of the Strait of Hormuz. Aramco had resumed crude oil loadings on Friday at its Ras Tanura terminal in the Gulf after they were halted for nearly 4 months due to West Asia conflict. According to the Saudi Ministry of Energy, all 14 victims were Saudi nationals. A full investigation has been launched to determine the cause of the crash. In the ICC Women's T20 World Cup, India have set a target of 171 runs for Australia in their final, the must-win Group A match at Lord's in London. In reply, Australia were 35 for 1 in 4.4 overs when reports last came in. Earlier, opting to bat first, India posted 170 runs, losing 4 wickets in the stipulated 20 overs. Skipper Harmanpreet Kaur scored 56 in 27 balls. For Australia, skipper Sophie Molyneux bagged 3 wickets. And in men's cricket, hosts Ireland have set a target of 155 runs for India in the second and the final T20 international of the two-match series in Belfast. In reply, India were 54 for 4 in 8 overs when reports last came in. The rain has currently halted play. Ireland lead the series 1-0. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. Says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honored with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. New Delhi rejects Islamabad's allegations over recent incident in Karachi, terming them baseless. Europe continues to experience record-breaking heatwave. France reports over 1,000 deaths. In cricket, India set a target of 171 runs for Australia in their final Group A match of the Women's T20 World Cup in London. And in men's cricket, India gets a target of 155 runs by hosts Ireland in the final T20 international in Belfast. And that's all in the news at 9. Good night.
3: Adab. ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हेरमिनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का समंदर बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोर देकर कहा कि मुल्क की तामीर में अवामी शिरकत की ताकत भारत की सबसे बड़ी क़ुव्वतों में से एक है। भारत ने कराची में हालिया वाक़ियात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। लंदन में ख़वातीन के T20 आलमी कप के अपने फाइनल ग्रुप ए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है और मर्दों की क्रिकेट में बेलफास्ट में फाइनल T20 बैनुल अक़वामी मैच में मेज़बान आयरलैंड ने भारत को जीतने के लिए 155 रनों का निशाना मुकर्रर किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत बहिरे हिंद को एक ऐसा खित्ता समझता है जहां इक्तिसादी खुशहाली के साथ साथ समंदरी तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जाता है, नेज जहां शराकत दारी साइज पर मबनी नहीं बल्कि बाहमी इज्जत और एतमाद पर मबनी है। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का एक समंदर बनाता है।
0: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
3: जनाब मोदी विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हेरमिनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने बाहमी तआवुन के तमाम शोबों का जायजा लिया और बाहमी मफाद के इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर तबादले ख्याल किया। दोनों ममालिक ने ज़राअत मालियात खला और सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में बहुत से समझौतों का तबादला भी किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इजहार मसर्रत किया कि सेशेल्स में UPI का आगाज करने के लिए एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए हैं।
0: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशेल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज UPI को सेशेल्स में लागू करने के लिए MOU किया जा रहा है।
3: उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में भारत सेशेल्स शराकतदारी वक्त की आजमाइश पर पूरी उतरी है। उन्होंने कहा कि आज जन औषधि से मुतालिक जिस मुफाहमत नामे पर दस्तखत हुए हैं वो सेशेल्स के अवाम को मेयारी और किफायती अदविया फराहम करने में मदद करेगा। इज्तम से खिताब करते हुए सेशेल्स के सदर हेरमिनी ने कहा कि बाहमी ताल्लुकात में बहिरे हिंद का खित्ता मरकजी हैसियत रखता है। दोनों मुल्कों ने समंदरी कज़ाकी मनशियात की नाजायज तजारत गैर कानूनी माहीगीरी और सरहद पार के जरायम के तईं अपने अहद का एदा किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की में क़यादत के लिए सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। सेशेल्स के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को यह पुरवक़ार एजाज दिया। वज़ीर-ए-आज़म को यह एजाज उनकी माहौलियात साजगार क़यादत और तरक्की याफ्ता ममालिक के बढ़ते हुए मफादात नीज नीलमू मईशत आबो हवा से मुतल्लिक कार्रवाई समंदरी वसाइल के पायदार बंदोबस्त और इस्माल आइलैंड तरक्की पजीर ममालिक की तरक्याती ख्वाहिशात के तईं उनकी कोशिशों को तस्लीम करते हुए दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस एजाज को उन तमाम ममालिक से मंसूब किया जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहदबंद हैं नेज आबो हवा की तब्दीली के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। बाद में दिन में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सेशेल्स की कौमी असेंबली से खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और सेशेल्स दोनों एक ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं जहां तरक्की मजीद शमूलियाती हो और जहां बैनुल अक़वामी इदारे हम असर हक़ाइक़ की अक्कासी करते हों। उन्होंने आलम जुनूब के मफादात को आगे